मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 998 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि। तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभारंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 908 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 6 बजने को हैं और पहले हिंदी में समाचार और उसके बाद 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600

श्रोताओं, ये भक्ति रचनाएं आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है मन की प्रसन्नता। वाचक स्वर जशपाल सिंह राठौड़ का।
1: भगवान महावीर ने कहा है, अपने आप को सदा प्रसन्न रखो। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की जहाँ कार्य क्षमता बढ़ती है, वहीं उसकी आयु में भी वृद्धि होती है और बुद्धि विकसित होती है। प्रसन्नता का अर्थ मात्र सुख, हर्ष या खुशी नहीं है, वह सब पदार्थ सापेक्ष है। पदार्थ से जुड़े सुख, हर्ष आदि के साथ दुख और विषाद भी निश्चित होते हैं। प्रसन्नता वस्तु निरपेक्ष होती है, वह चित्त की पवित्रता या स्वच्छता का पर्याय है और उसका उदय होता है राग द्वेष मुक्त चेतना में। राग द्वेष और मोह चेतना जितनी क्षीण या मंद होती है, उतनी ही प्रखर होती है प्रसन्नता की अनुभूति। मानव मन की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रफुल्लता या उदासीनता। ये उदासीनता मध्यस्थता या समता से भिन्न है, यह है निराशा की संतति है। खिले हुए और मुरझाए हुए फूल में जितना अंतर होता है, उतना ही अंतर होता है प्रफुल्लता और उदासीनता में। प्रसन्नता चित्त का विस्तार है और उदासी चित्त की सिकुड़न। अधिकांश व्यक्तियों की ये धारणा है कि प्रसन्नतादायक परिस्थितियां हों, सुखद अनुकूल और सफलता भरे अवसर हों, तभी प्रसन्न हम रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर यह पूरा सत्य नहीं है। यदि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो अनेक समस्याओं से हम मुक्त रह सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, विवेकशील व्यक्ति सदा प्रसन्न ही रहते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति से वे बहुत ऊपर रहते हैं। सही माने में इंसान वो है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहे, हंसमुख रहे, प्रसन्न रहे। बहुत से लोग बस दुखों के गीत गाते हैं। कोई भी पर्व हो खुशियों का, वो दुख ही मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। मनोविज्ञान का निष्कर्ष है, जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त और नम्र होते हैं, उनके हर काम में सफलता मिलती है। जिस तरह सागर की सतह पर उठने वाला हर बुलबुला उछलता हुआ दूर तक चला जाता है, वैसे ही मुस्कान का प्रभाव भी दूर तक चला जाता है। मुस्कुराहट मन आंगन, घर आंगन को प्रसन्नता से भर देती है, मित्रता के संसार को समृद्ध करती है। भौतिक प्रतिस्पर्धाओं के इस युग में जिंदगी के तनावों, दबावों को कम करने और आनंदित जीवन जीने का मंत्र है प्रसन्नता।

अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। विषय था मन की प्रसन्नता, वाचक स्वर जशपाल सिंह राठौड़ का, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही समय बाद 7:10 पर कार्यक्रम होगा खेती हरा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा कृषि में जल संरक्षण। दोपहर 12:50 पर ग्रामीण श्रोता सुना करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान, जिसमें आज जानकारी होगी इस माह के कृषि कार्य। रोज की भांति चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7:00। आज आप सुनेंगे पत्रोत्तर, व्हाट्सएप मेल और पत्रों पर आधारित। उपलब्ध हुए तो बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी ग्रामीण श्रोताओं को दी जाएगी। रोज की भांति मानस गान आप सुना करते हैं 7:20 पर। आज सुनेगा भाग संख्या 291, मुख्य स्वर श्रीकांत परगांवकर और शोभना राव का होगा। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल हमारे केंद्र से होता है 9:10 पर, जिसमें आज कलाकार रहेंगी सीमा मिश्रा। प्रोग्राम सुप्रभात 7:30 पर। युगल फिल्मी गीत आप सुनेंगे 9:30 पर। दिन में 10:00 हमारा कार्यक्रम होगा सुहाना सफर। ये कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित होगा। प्रोग्राम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे दिन में 11:00। 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। कुछ और फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकते हैं दोपहर बाद 2:30। रात 8:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। रात 10:00 आप सुनेंगे हेलो मन भवन, जिसके प्रस्तोता होंगे रोहिताज शर्मा, निदेशक संयोजक नवीन सिसोदिया।

संध्या 7:45 पर आप कुछ और फिल्मी नगमे हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। झोंक माहिती प्रोग्राम सराइकी होगा संध्या 6:05 पर। युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 5 बजे, जिसमें आज रेडियो का महत्व विषय पर जानकारी, फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद और टुडे हिस्ट्री विषय पर जानकारी। बहनों के लिए उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत होगा 2:05 पर, जिसमें आज वन महोत्सव सप्ताह विषय पर जानकारी, उपभोक्ता के अधिकार, घर का माहौल खुशनुमा बनाने में नारी की भूमिका

0: पर जानकारी दी जाएगी। जानकारी का अन्य विषय होगा डाइटिंग और संतुलित आहार। हमारे केंद्र से सुगम संगीत आप सुनेंगे 8:45 पर, दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम रिले किया जाएगा। जिले की चिट्ठी संध्या 6:40 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होगी। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संभाषणम् अकरोत्। संभाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिम एशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमंत्रिणा उभयोर देशयोर्मध्ये संजातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरंतर नीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समाह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेही ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92.6 लाख करोड़ रुपयाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढसमन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायी सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनं उभयोर देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टं अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति।

0: अद्य जुलाई मासस्य एकदिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येते सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अंतर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अंतर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1,000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2,700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच

क्योंकि T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: governed under a new framework. From July the 1st, the Uttarakhand Madrasa Education Board, the Uttarakhand Madrasa Education Board Act 2016, and the Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Rules 2019 will cease to have effect. In football, France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. And in the ICC Women's 2020 World Cup, Australia stormed into the final after defeating the West Indies by 6 wickets at the Oval in London. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेतिहर अवस्थे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जानकारी, कृषि में जल संरक्षण।
2: राम राम। किसान भाइयों, आज बात करांगा अपा सिंचाई जल के सदुपयोग की। या पाइया भी कैस कहा कि सिंचाई के पानी की बचत करनी। जी हाँ, थे सारा जानो ही हो कि सिंचाई को पानी की बचत करनी कितनी जरूरी है और बहुत लाभदायक भी है। और अपा सुना ही कि पानी की तो बूंद बूंद की बचत करनी चाहिए, क्योंकि पानी अपनी एक अनमोल धरोहर है। किसान भाइयों, फसल बीजते टाइम अपा ने वो ध्यान रखना है कि जिकी फसल ने कम सिंचाई की जरूरत हो और लाभ ज्यादा हो, बी किस्म की बीजांती आप अपने खेत में करा। कई बारी किसान भाई जानकारी के अभाव में कोई इसी किस्म की बीजांत कर ले, जिके हम सिंचाई बार बार करनी पड़े और लाभ भी घणो को नहीं होवे। तो इन बात को विशेष ध्यान रखनो है। अब जब आप बात करा खेत में सिंचाई की, तो सिंचाई करनो पहले अपन वो ध्यान रखना है कि एक तो भूमि जिकी है एकदम समतल होवे, भी मैं खाडा नहीं होना चाहिए, कोई जगह जिकी है ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपने खेत में जगह ऊंची नीची है तो बिना किराए से एक सी कर लिया, और जिनने पानी जावे भी दिशा का नहीं थोड़ी सी ढलान दे दें, जिके सू कि पानी सिंचाई के टाइम सही चाल तो रहे और एक जगह रुके भी ना, क्योंकि जे क्यारी आगू ऊंची हो सी तो बाकी अब क्यारिया ने अपने ज्यादा भरनी पड़ सी और पानी भी बिंग में बहुत ज्यादा भर जाएगा, तो बीज क्यों हो सके, फसल भी अपनी खराब हो जाए और पानी को भी जो है दुरुपयोग हो सी। किसान भाइयों, आपने क्षेत्र की भूमि है बा रेतली भूमि है, और बिंग में सिंचाई की बिया भी ज्यादा जरूरत रहे रेतली भूमि है, और दूसरों के सिंचाई करना थोड़ो कठिन भी हो। तो आजकल तो थे जानो ही हो कि बहुत सारी सिंचाई पद्धतियां हैं, या फुहारा सिंचाई पद्धति है, या एक टपका सिंचाई पद्धति बोलना, जी कहना आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कह दें। तो ऐ जी की सिंचाई पद्धतियां है आपने अपनानी चाहिए। फुहारा सिंचाई पद्धति में फुहारा शू सिंचाई होवे, आपने जिया रेतला धोरा है वहां पर आप कोई भी फसल बीजा तो भी मैं फुहारा शू सिंचाई करनी चाहिए। इसमें एक तो पानी की बचत हो और दूसरों की है फसल भी अच्छी हो और लाभ भी हो। टपका सिंचाई पद्धति में क्या है, जी पाइप हो, पाइप में छोटा छोटा सुराख करके और बाना आप कनेक्शन बामा कर दें, तो भी क्या है जिका पौधा है बांगी जड़ा में टपको टपको या बूंद बूंद पानी है वो जानते रहे हुए। इसमें एक तो क्या पौधे की नमी बनी रहे और पानी की भी बहुत बचत हो। फुहारा सिंचाई पद्धति या जी टपका सिंचाई पद्धति आशू लगभग एक तिहाई पानी की बचत हुए। और कई बारी किसान भाइयों आपा देखा कि पानी की कमी की वजह आपने भूमि जिकी है वह खाली रखनी पड़े, सारी भूमि में आपा बीजांत कौन कर सका। अगर आप सिंचाई पद्धतियां अपना से तो आप पूरी भूमि में बीजांत कर सके, क्योंकि अपने कन जिकी पानी की बचत होगी तो वह खाली भूमि में जिकी आप बीजांत कर सें वह भी में काम आ जाएगी। इस अलावा आपने फसल में जितनी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की जरूरत हो बितो ही पानी आपने फसल ने देना चाहिए, बीती ही सिंचाई करनी चाहिए। कई बारी आप क्या है पानी अपने कन भरपूर हो या कई बारी दूसरी बारी टाइम छू आ जाए तो आप क्या है जरूरत के बिना भी आप सिंचाई कर दें फसल ने, तो ये बात को भी खास ध्यान रखना, बिना जरूरत के सिंचाई नहीं करनी है फसल ने। और वो जो को पानी फालतू है बी टाइम अपन की है कोई डिग्गी या कोई तालाब खेत में बना लेना चाहिए, और वो डिग्गी या तालाब में जिको फालतू पानी है बिना अपन इकट्ठो कर लेना चाहिए, और वो आगे जिको अपने जरूरत के टाइम काम आसी और बिना उपयोग कर लेना चाहिए। इसमें अलावा किसान भाइयों, बिरखा के टाइम भी अपन ने ध्यान रखना है। बिरखा के टाइम में एक तो बिया भी सिंचाई की आवश्यकता कम हो, और दूसरों के है बिरखा के टाइम में जो बिरखा को पानी है वो तालाब या डिग्गी में इकट्ठो कर लेना चाहिए, जिको कि अपन आगे ना अपनी जरूरत के अनुसार आप भी ना काम में ले सका। इन अलावा आप जो बाग की बात करा तो बाग में थन ध्यान ही है कि बाग जी का पौधा है भाई एक कतार में एक ही दिशा में आप लगावा, तो भी हिसाब छू ही आपने भी दिशा के हिसाब छू ही जिका पौधा है बंग है पौधा आस पास एक क्यारी बना लेनी चाहिए, और भी क्यारी सुई जिकी है सिंचाई आपने करनी चाहिए। बीस एक तो पौधा ने पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जी सी और पानी की बचत भी हो सी, क्योंकि जी आप क्यारी ना बनावा तो अपन पूरा खेत में पानी देना।

0: और बाग में आपा ने पूरे खेत ने भरण की जरूरत को नहीं होवे, तो सिर्फ क्यारियां सुई सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा अपन खेत में कोई जगह फालतू का खरपतवार है, जंगली झाड़ियां है, घास फूस है, बाना भी खेत सु निकाल के साफ रखना चाहिए। बीच में अपन के फायदा है कि एक तो जगह घास फूस है बे भी फसल के सागे सागे पानी पिए, तो अपन पानी की जगह खपत अब ज्यादा हो सी, और अगर आप घास फूस साफ रखांगा तो अपने के पानी की खपत कम हो जाएगी, और दूसरों के घास फूस और झाड़ियां होने की वजह क्यारियां में पानी जो है धीरे धीरे चले, ज्यादा पानी की जरूरत पड़े सिंचाई के टाइम, तो अपन खेत ने एकदम साफ सुथरो रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों अपना जिसका कृषि विशेषज्ञ है टेमो टेम बांकनू सलाह लेते रहना चाहिए, बे थाने नई नई पद्धतियां के बारे में जागरूक करे, पद्धतियां के बारे में बतावे, और थाने वो भी बतावे अपने की जिकी किसी फसल में कितना पानी की जरूरत है, कितनी सिंचाई जिकी अपने पर्याप्त रहेगी। तो बीच में अपने जिको पानी अपने बिना जरूरत के जिके आप कई बार पानी दे दें फसल ने, वो भी बचत हो जाएगी, तो पानी की इतना बचत कर सका। तो किसान भाइयों सगली बातों को अपन ध्यान रखना है और सिंचाई लोगों सदुपयोग करना है। अब मैं चालू राम राम सा राम राम।
1: खेतीहर वास्ते कार्यक्रम में अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे जानकारी कृषि में जल संरक्षण। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं बैरागनाथ की आवाज में ये लोक भजन।

बैरागनाथ की आवाज़ में अभी आपने ये लोक भजन सुना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए मानस गान। आज सुनिए भाग संख्या 291, मुख्य स्वर श्रीकांत परगांवकर और शोभना राव का।

लंका के लिए कूच करने को तत्पर श्री राम की सेना वानर राज सुग्रीव का आदेश पाते ही गर्जन तर्जन करती प्रस्थान करती है। विशाल रूप धारण कर वानर और रीछ वृक्षों तथा पर्वतों का शस्त्र लेकर थल और आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। दिशाएं भयंकर नाद से गूंजने लगती हैं। पर्वत चंचल हो जाते हैं और समुद्र मानो खौलने लगते हैं। श्री राम की सेना सागर पार कर लंका में उतर गई है, ये समाचार सुनकर मंदोदरी आतंकित हो जाती है। वो रावण से विनती करती है कि वो श्री हरि का विरोध छोड़ दें, क्योंकि सीता को लौटाए बिना शिव और ब्रह्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।

सुप्रभात दोस्तों, बात करेंगे भारत की महिमा की। भारत की महिमा उसकी विविधता, समृद्धि और एकता में छिपी है। भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहां की संस्कृति में हर धर्म और जाति के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारे का अनुभव करते हैं। यहां की धरोहर, विरासत और संस्कृति पूरी दुनिया से अलग है। भारत का गौरव यहां के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम और विभिन्न योद्धाओं की बलिदान भावना भी भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत एक नदियों का संगम है जो मिलकर भूतल की शोभा बढ़ाता है। भारत वो भाईचारे का मंदिर है जो मिलकर रहना सिखाता है। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधना अपनी भाषा का।

मानस गाना भी आपने सुना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, कार्यक्रम सुनिए।

भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अभी अपने महेंद्र कपूर की आवाज में पूर्व और पश्चिम फिल्म का ये गीत सुना। श्रोतो, आपने सुना होगा कि पानी की हर बूंद कीमती है, इसे व्यर्थ ना बहने दें, या यूं कह लीजिए कि जल ही जीवन है। हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है। सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि पूरी धरती 2/3 जल से भरी है। हमारे शरीर और जीवन की पूंजी है जल, वायु और भोजन। इंसान बिना खाए तो कुछ दिन तक रह सकता है, लेकिन बिना पानी के एक दिन भी निकालना मुश्किल है। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्य जैसे नहाना, खाना पकाना, सफाई और कपड़े धोने के लिए आवश्यक है। घर हो जा बाहर, हर जगह हमें पानी की जरूरत होती है, और साफ पानी के पूरा करने के लिए नए नए तरीके और तकनीक आजकल उपयोग हो रही है। श्रोताओं, जल ही जीवन है, इसका मतलब है कि जहां पानी होता है वहीं जीवन होता है। पूरे ब्रह्मांड में धरती पर ही पाया जाता है पानी। जल हमें प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल खजाना है, इसका सम्मान करना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सभी की जिंदगी में जल का उपयोग होता है। तो कहा जाएगा जल के बिना जीवन असंभव है। तो श्रोताओं, इतना महत्वपूर्ण है जल, तो इसकी हर बूंद कीमती है, इसे व्यर्थ ना बहने दें।

प्रभात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, DRM 909 किलोहर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं। सुप्रभात में आज हूँ आपके साथ आपका दोस्त हरप्रीत।

श्रोताओ, मानव का मानव से प्रेम ही सच्ची ईश्वर आराधना है। साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रब पायो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। श्रोताओ, दूसरों की मदद करने से जो प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। मदद करना जिनकी हमेशा फितरत में होता है, हाथ में आया हुआ मौका वो कभी ना खोता है। बुराई को मिटा तो नहीं सकता वो हर जगह से, पर अपनी अच्छाई का बीज वो सदा बोता है। तुलसीदास जी ने भी कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज आप किसी की मदद करें तो कल वक्त आने पर आपके साथ कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा, ये प्रकृति का नियम है। दूसरों की मदद करना एक मानवीय कार्य है, क्योंकि अपने ऊपर दूसरों को रखना केवल एक मानव ही कर सकता है। श्रोताओं, ऐसा करने से उसे एक संतुष्टि और खुशी का अनुभव होता है। जो व्यक्ति दयालु होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसे काम कर सकते हैं जिससे दूसरों का भला हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़ों की मदद करना और उनके छोटे छोटे कार्यों में उनको मदद कर आराम पहुंचाना, कम आय वाले लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, बस ट्रेन में सफर करते समय जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। श्रोताओं, दयालुता बिना बोले दूसरों को अपना प्रेम दिखाने का भाव है, जिससे हमारी दुनिया खूबसूरत बनती है। जो दयालुता हम दुनिया को देते हैं वह किसी न किसी रूप में हम तक वापिस जरूर पहुंचती है। कहा गया है ना, कर भला तो हो भला।

नया दौर फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा की आवाज़ में। दोस्तों चलो हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत लड़ लिए ऊंचे आसमानों से यारो, चलो जमी पर ही कहीं इस तह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजारा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। दोस्तों ये जिंदगी हर दिन हमें नई चीज़ें सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। कभी जब हमारी ज़िंदगी में उदासी होती है, अंधेरा होता है, तो ऐसा लगता है मानो कभी सुबह होगी ही नहीं, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जिंदगी हर पहेली का जवाब हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर मिलता है। बस हमें चलते जाना है और कोशिश करनी है कि हर आने वाले दिन को बीते हुए दिन से बेहतर बनाने की। हमारे लिए भी और हमारे आसपास मौजूद सभी के लिए ऐसी ही कोशिश हम करते रहेंगे। ये कह के दिल

मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के बाद खुशी के साए हैं। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, किशोर कुमार की आवाज, गीत अनजान का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। प्रोग्राम सुप्रभात से अपने दोस्त हरप्रीत को अब अनुमति दें, आप सुनते रहें ये गीत।

अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब थोड़ी ही देर बाद 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर खबरनामा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली

0: पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है।

0: इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
1: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है, तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई ताइकिची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।
1: VBG रामजी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाइख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी रामजी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तस्वूर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी ताम रखते हुए सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निज़ाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपये रोजाना की उजरत आरजी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। MG नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रुपये थी, जिसे अब VBG रामजी के तहत 327.40 रुपये रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकीलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेरे निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
0: सभी मदरसों को तालीम से मुताल्लिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं।

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरमू जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अता करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात व वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदाम से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ़ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के तहफ्फुज़ नीज तजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की ज़रूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेज़बानी और इसकी कामयाब मनसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मोहतरमा तकाइची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आज़ादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरक अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रुपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रुपये होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रुपये था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रुपये से कम करके 7.5 रुपये कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी असलाहत और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरक तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदाम

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप राजेंद्र जैन को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को हैं अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। दो दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में

0: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु 20 से अधिक लोग घायल और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित होगा यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस 2 दिन के सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled data driven and secure digital governance रखी गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता डीप टेक क्वांटम कंप्यूटिंग वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी यह आयोजन समावेशी पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी समाचार जयपुर
0: विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं ये दरें आज से लागू हो गई हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है मंत्रालय ने बताया कि पहली बार ₹300 प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम नहीं हो राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के ₹298.80 से बढ़ाकर वीबीजी रामजी के तहत ₹327.40 प्रतिदिन कर दिया गया है इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत बढ़ोतरी हुई है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी ₹300 से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है वीबीजी रामजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा दोपहर 1 से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है पहले ये छूट कल यानी मंगलवार तक के लिए दी गई थी ये रियायत घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग कपड़ा फार्मास्यूटिकल्स रसायन मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा इस बीच तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में ₹183.50 की कमी की है भारतीय तेल निगम के अनुसार संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं कीमतों में कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर ₹2,930 हो गई है इस निर्णय से रेस्टोरेंट ढाबों होटलों और खाद्य तथा पेय पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है ये समाचार आकाशवाणी जयपुर

0: अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़ा के पास आज अलसुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने आकाशवाणी को बताया कि यह दुर्घटना एक स्लीपर बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद उसमें आग लगने से हुई। आग के बाद कई यात्री जलती हुई बस में फंस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों में से अधिकांश मध्य प्रदेश और ऋषिकेश के हैं।
1: हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस और जाते टाइम इनका कोई ट्रोला से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन बाद मालूम पड़ेगा। 35-36 सवारी होनी चाहिए इसमें, इसमें 22 इंजर्ड हुए हैं और 8 की कैजुअलिटी है। ये 2:30 से 3 बजे के बीच का है, सुबह रात को मतलब। और जो इंजर्ड थे उनको प्राथमिक उपचार चल रहा है, उनका वो ठीक है, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है। पर जो कैजुअलिटी हुई है वो काफी दुखदायी है। हो सकता है ट्रोला से टकराई हो या ड्राइवर को झपकी आई हो, ये तो अभी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। करौली जिले के पांचना बांध के पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। जयपुर में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद लिखित समझौता हुआ। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़े जाने की तारीख तय करेगा, इसके बाद नहरी तंत्र की जांच के लिए जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि 2100 MCFT क्षमता वाले पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस समझौते से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
2: समझौते के तहत गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में भी जल प्रवाह शुरू होगा। जल संसाधन विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़ने की तिथि तय करेगा, जिसके बाद नहरी तंत्र की तकनीकी जांच और टेस्टिंग शुरू की जाएगी। सरकार ने नहरों की मरम्मत के कार्य को भी गति देने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि कमांड क्षेत्र के किसान नहरों में पानी छोड़ने और कैचमेंट क्षेत्र के किसान लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से अपने गांवों को पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से जिले के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: और अब मौसम। हवाओं में नमी के प्रभाव से प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी का असर है। दिन के समय कड़ी धूप के साथ उमस भी लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल। और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा। संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मरुमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सीमा मिश्रा को।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: मरुमंगल कार्यक्रम में आज आप सीमा मिश्रा को सुन रहे हैं।

मरुमंगल कार्यक्रम में आज आप सीमा मिश्रा को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ युगल फिल्मी गीत सुनवाएंगे। आइए पहले सुने नसीब फिल्म में डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये एक दुकाना।

प्रोग्राम की अगली पेशकश दहलीज फिल्म से, आवाजें महेंद्र कपूर और आशा की। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ से।

0: ये आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण।
1: कुछ लिखा?
2: हाँ।
1: क्या लिखा?

अभी आप कुछ युगल फिल्मी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहाना सफर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपके रेडी दोस्त हरप्रीत का आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, डीआरएम 909 किलोहर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं।

ये गीत आप किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता। गीत गुलशन बावरा का, संगीत आर डी वर्मन का।

प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम आशा, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। प्रोग्राम सुहाना सफ़र आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आवाज मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम जब जब फूल खिले।

प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम शोले, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी फरमन का।

श्रोताओं, ये फिल्म नगमे आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। हमारी मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, डीआरएम 909 किलो हर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन

श्रोताओं, ये फिल्म नगमे आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, डीआरएम 909 किलो हर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम द ट्रेन।

ये एक दो गाना फिल्म दो कलियों से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता की, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रवि का। तो आप सुन रहे हैं लता और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम दो कलियां।

जानवर फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ें। फिल्म का नाम प्यासा सावन।

प्रोग्राम की अगली पेशकश लोफर फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता की आवाज, फिल्म का नाम आम्रपाली, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का। प्रोग्राम सुहाना सफर आप सुन रहे हैं समय आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

लीजिए गीत सुनिए कुर्बानी फिल्म से, आवाज़ें कंचन और मनहर की, गीत कल्याण जी, गीत इंडीवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

सुहाना सफर। अभी आप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सभी फौजी भाइयों को नमस्कार। आज संजय वैद की ओर से दोस्तों आज का ये प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें मेजर साहब फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया अनुराधा पौडवाल के साथ उदित नारायण ने। गीत संगीत आनंदराज आनंद का।

थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, इस फिल्म में सुनिए श्रेया घोषाल के साथ स्नेहा सुरेश को। शब्द रचना प्रसून जोशी की और धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

परदेसी बाबू, इस फिल्म में सुनिए अनुराधा पौडवाल के साथ उदित नारायण को। शब्द रचना अजीज जालंधरी की, धुन है सुखविंदर की।

ताल फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, आशा भोंसले और आदित्य नारायण का गाया हुआ, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत ए आर रहमान का।

कृष फिल्में सुनी, कुणाल गांजावाला के साथ साथियों को, शब्द रचना विजय अकेला की, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

फौजी भाइयों, सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। अगला गीत हमने चुना है फिल्म कसूर से, जिसे गाया कुमार सानू ने। समीर के लिखे गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

ताजमहल। इस फिल्म में सुनिए ए हरिहरन को, शब्द रचना नक्श लायलपुरी की, संगीत उत्तम सिंह गुरमीत सिंह का।

मोहब्बत के दुश्मन। इस फिल्म में सुनील सुरेश वाडकर के साथ अलका याग्निक को, गीत लिखा प्रकाश मेहरा ने, संगीत तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने।

शबनम फिल्म में ये थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल। शब्द रचना फैज अनवर की थी, संगीत अनु मल्लिक का था। फौजी भाइयों, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के साथ मंगल सिंह को। फिल्म का नाम है एक धुन प्यार की। गीत लिखा श्याम राज ने, संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

फौजी भाइयों, इस गीत के साथ ही आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजय बैद को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी फौजी भाइयों के लिए सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बज चुके हैं। आइए सुने हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दिन में 12:30 पर गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। कलाकार होंगे गायक भूपेंद्र सिंह। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 12:50 पर किसान भाइयों के लिए आज चर्चा का विषय रहेगा इस माह के कृषि कार्य। दिन में 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आज महिलाओं के लिए बातचीत के विषय रहेंगे। वन महोत्सव सप्ताह, उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही घर का माहौल खुशनुमा बनाने में नारी की भूमिका के बारे में बातचीत होगी और जानेंगे डाइटिंग और संतुलित आहार में अंतर के बारे में। फिल्म संगीत होगा दोपहर 2:30 पर। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। शाम 5 बजे युवा साथियों का प्रोग्राम होगा युववाणी। आज बुधवार का दिन है और आज का दिन तय है श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम आपकी पसंद के लिए। साथ ही चर्चा होगी रेडियो के महत्व की और जानेंगे आज के इतिहास को। सराकी भाषा में कार्यक्रम होगा शाम 6:05 पर। शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज ग्रामीण परिवार सुनेंगे कार्यक्रम पत्रोत्तर। साथ होंगे गीत भजन और बाजार भाव। फिल्म संगीत होगा शाम 7:45 पर और कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से रात्रि 8 बजे। रात 9:15 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। चर्चा का विषय, समसामयिक विषयों पर आधारित ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर।

हेलो मन भावन, श्रोताओं की टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा आज रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। कार्यक्रम की पेशकश रहेगी रोहिताश शर्मा की और कार्यक्रम के संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 12:05 हो रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम सुने, कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों को नमस्कार, संजय बैद की ओर से। श्रोताओं, आज दिन है 1 जुलाई का, और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के दिन को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को, आज के दिन मनाने का जो विशेष कार्यक्रम, वो इस तरह से कि पूरे देश भर में डॉक्टर्स को उनके सेवा भावी पेशे के लिए बधाई दी जाती है, उनके कार्यों की सराहना की जाती है, उन्हें उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। और ये दिन किस लिए मनाया जाता है, उसका कारण ये कि आज के दिन मशहूर चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म भी हुआ था, और आज के दिन 1 जुलाई को उनका निधन भी हुआ था। चिकित्सीय पेशे में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ये दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बी सी राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ, और ये एक संयोग है कि 1962 में आज के दिन उनका निधन भी हो गया था। उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व उन्हें हिंदुस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। पहली बार IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1 जुलाई का जो दिन है उसको डॉक्टर्स डे के रूप में मनाने की शुरुआत 1991 में की, और तभी से लेकर आज तक इस दिवस को डॉक्टर दिवस यानी चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर्स के योगदान को हम और आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे चिकित्सीय सेवाओं की आवश्यकता ना पड़ी हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें किसी न किसी दिन कभी न कभी डॉक्टर्स की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए उन्हें धरती का भगवान भी कहा गया है।

अंधेरों में रोशनी दिखाने वाले डॉक्टर्स को आज चिकित्सक दिवस के रूप में हम याद कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उनकी सेवाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। हर वर्ष चिकित्सक दिवस की कोई ना कोई थीम रखी जाती है और जो 2026 की थीम रखी गई है वो है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स।

यानी मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है? मित्रों, इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर अपना जीवन रोगियों की सेवाओं में दिन रात लगा देते हैं। यदि रात को 2 बजे भी कोई इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर्स नींद से उठकर अपने मरीजों की सेवा के लिए अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं। ना दिन का चैन न रात का आराम। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्हें अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी कई बार वक्त नहीं मिल पाता। उनकी काम के घंटे चाहे सरकार ने नियत कर दिए हों, लेकिन इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक काम भी करना पड़ता है। आपात स्थितियों को वो संभालते भी हैं और कोविड की टाइम हम सब ने देखा है कि किस तरह से डॉक्टर्स ने अपनी जान को हथेली पर रखकर मरीजों को बचाने के प्रयास किए और इन प्रयासों में कई चिकित्सकों ने अपना जीवन भी गंवाया था। तो इसीलिए उनकी सेवाओं को याद करने के लिए आज ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। बीसी रॉय के जन्मदिन और उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस का आरंभ किया गया।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान।

0: करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
1: मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
0: कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
1: कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
0: जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है।

सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

मित्र, डॉक्टरी का जो पेशा है वो एक मेहनत का पेशा है। एक डॉक्टर बनने में जी हाँ, उस डॉक्टर का काफ़ी समय लगता है, वहीं सरकार के भी एक डॉक्टर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और जो नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है डॉक्टरी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, उसमें भी इस बार आपने देखा होगा कि पेपर लीक की वजह से हमारे छात्र छात्राओं को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, सरकार को भी परेशानी हुई, एग्जाम दोबारा लिए गए। और उसका जब परिणाम आएगा तो कई छात्र खुश होंगे, कई शायद निराश भी हों। कहने का मतलब यही है कि डॉक्टर बनने से लेकर डॉक्टर बनने के बाद तक का जो एक डॉक्टर का जीवन का सफ़र है वो चुनौतियों भरा है। हर पल पर, हर वक्त उन्हें कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, चाहे इस पेशे में, इस सेवा कार्य में। आर्थिक रूप से इस पेशे को क्यों न अच्छा मान लिया जाए, लेकिन एक डॉक्टर हर वक्त अपनी जो शपथ लेता है, डॉक्टर मरीजों की सेवा की, दुखियों की सेवा की, उन्हें बचाने का प्रयास करने की, उस शपथ को वो जीवन भर पालने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस शपथ को भूल जाते हैं और सेवा को व्यवसाय के रूप में अपना लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इस पेशे को बदनामी भी मिलती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। एक चिकित्सक अपने पूरे जीवन में सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन बचाता है, उसकी रक्षा करता है। इसीलिए इस पेशे को सभी नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। डॉक्टर्स को एक समाज में अच्छी इज्जत मिलती है, अच्छा दर्जा उसे दिया जाता है, बड़ी सम्मान की दृष्टि के साथ एक डॉक्टर्स को देखा जाता है। हम भी आज इस डॉक्टर्स डे के दिवस पर डॉक्टर्स की सेवाओं का सम्मान करें, उन्हें इज्जत बख्शें और उनके काम की चुनौतियों को जानते हुए, समझते हुए, उनकी जो छोटी मोटी भूलें कई बार हो जाती हैं उनको नज़रअंदाज करने का प्रयास करें।

मित्र, जिस तरह से आसमान पर ईश्वर है, बिल्कुल उसी तरह से धरती पर डॉक्टर भी किसी ईश्वर से कम नहीं है। अपने मरीजों को मौत के मुंह से निकालने का भरसक प्रयास एक डॉक्टर करता है। हालांकि जीवन देने का काम ईश्वर का है, लेकिन उसके प्रतिनिधि के रूप में अपना वो सब कुछ नौछावर कर डालता है अपने मरीज की जान बचाने के लिए। और जब कोई एक्सीडेंट होता है, किसी आपात स्थिति की जरूरत पड़ती है, तब सबसे पहले हमें डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ता है। और जब किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाए और उसे उस समय पर चिकित्सीय सहायता मिल जाए, तो शायद वो जो दिल की धड़कन डूबने वाली है, वो डॉक्टर के प्रयासों से पुनः वापिस भी आ सकती है।

कुछ बातें कुछ गीत। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के ठीक 12:30 हुए हैं। आइए सुने गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। आज फनकार हैं गायक भूपेंद्र सिंह।

0: अभी आप सुगम संगीत में भूपेंद्र सिंह को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:50 हुए हैं। खेत खलियान कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है इस माह के कृषि कार्य।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करांगा ई मौके बीजेडी अपनी फसलों के माँ करने वाले काम धंधांग बारे में। जका भाई लोग अमेरिकन कपास बीज रखी है बे अब ध्यान रखे कि ई टाइम कपास में विरलीकरण करना जरूरी है। किसान भाइयों विरलीकरण आप पहली सिंचाई के बाद कर देना चाहिए। इंगा माए छू पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर तक आपने रखनी है और जठे ज़्यादा सघन पौधा होवे बने उखाड़ के विरला कर देना चाहिए। बात करा उर्वरक की, जे आपां बुवाई के टाइम नाइट्रोजन ना दी होवे तो पहली सिंचाई के सागे 12.5 किलो नाइट्रोजन यानी 28 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से दे देनी है। सिंचाई की जठे तक बात है किसान भाइयों, अमेरिकन कपास में पहली सिंचाई बुवाई के 30-35 दिन बाद और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 20-25 दिन बाद करनी जरूरी है। जे किसान भाइयों आपां नरमे की RST 9 किस्म की बीजांत कर रखी है तो इमें सिंचाई बुवाई के 50 दिन बाद भी आपां कर सका, जिसे एक सिंचाई की बचत कर सका। इंगे सागे सागे खरपतवार भी टाइम सारू निकालता रहना जरूरी है। किसान भाइयों पहली सिंचाई के बाद बत्तर आने पर आपां निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। इं ही देसी कपास में अब ई मौके बिरलीकरण करना जरूरी है। पहली सिंचाई के बाद पौधे से पौधे की दूरी 20-30 सेंटीमीटर रख के बिरलीकरण कर देना चाहिए। देसी कपास में बुवाई के टाइम जे यूरिया ना दी है तो 25 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से दे देनी है और देसी कपास में बुवाई के 35-40 दिन बाद पहली सिंचाई भी कर देनी है ताकि पौधा ने टाइम पर पानी मिल जाए और अच्छी बढ़वार भी होवे। इंगा सागे सागे खरपतवार भी निकालता रहना जरूरी है। टाइम सारू खेत में जागे घास फूस छोटा मोटा खरपतवार है बाने उखाड़ के ख़त्म कर देना चाहिए। अब बात करा किसान भाइयों धान की फसल में ई मौके करने वाले काम धंधांगी, क्योंकि आपने ही क्षेत्र में किसान भाई धान की रोपाई भी काफ़ी क्षेत्र में करे और बिया भी आपनों और नाली बेड पूरा राइस बेल्ट के रूप में जानी जाए। किसान भाइयों जगह किसान भाइयों पंजीरी की बिजाई कर देनी है वे अब धान रोपाई खातर खेत की जुताई शुरू कर देनी है। जे पंजीरी रोपाई के काबिल होगी यानी 25-30 दिन की पंजीरी रोपाई लायक हो जाए, जे पंजीरी तैयार है तो रोपाई शुरू कर देनी है। किसान भाइयों रोपाई के टाइम पौधे से पौधे की और कतार से कतार की जकी दूरी है वह 15 सेंटीमीटर आपने रखनी है। किसान भाइयों पौध रोपाई करता टाइम एक सगे दो पौधा जुड़वा रोपना चाहिए ताकि बाद में जकी पौधा की संख्या है वह आपने पूरी मिले। धान रोपाई को जो बढ़िया

वो जून के आखिरी सप्ताह से लेके जुलाई के पहले सप्ताह तक बढ़िया मानी जाए। यानी वो जो को टाइम अब चलन लग रहा है वो बढ़िया रोपाई को टाइम है। धान की फसल में 10 किलो नाइट्रोजन यानी 22 किलोग्राम यूरिया और 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई का टाइम दे देनी है। और जठे जिंक की कमी होवे बठे आपा 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा के हिसाब से दे देवा। धान की रोपाई के बाद 15 दिन तक खेत के माँ 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़े रहनो जरूरी है। इनके खातर टाइम टाइम पर सिंचाई करनी जरूरी है ताकि भूमि की नमी बनी रहे। किसान भाइयों, अब खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मिचेटी 5% का दाना 7 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से रोपाई गए 2 से 3 दिन बाद छिड़क देवा और 15 दिन तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर तक पानी खड़े रखा। या फिर पेंडी मिथेलिन 375 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति बीघा रोपाई गए 2 से 3 दिन बाद छिड़क देवा और 30 दिन के बाद एक निराई गुड़ाई अपन ने कर देनी है। अब बात करें अपन ग्वार की फसल के बारे में। जका भाई लोग ग्वार की बिजाई करनी है वे बढ़िया किस्मा को चुनाव करके बिजांत शुरू कर देनी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति बीघा के हिसाब से बढ़िया रहे है। और बुआई को जो को टेम है किसान भाइयों अब चलन ला रही है वो बढ़िया टेम है। खेत ने तुरता फुर्त तैयार करके बिजाई कर देवा। खूड से खूड की जो की दूरी है 32 सेंटीमीटर अपने रखनी है। किसान भाइयों, खाद उर्वरका में ग्वार खतर 5 किलो नत्रजन यानी 10 से 11 किलो यूरिया और 8 से 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई से पहली खेत में नाखना है। और जका भाई लोग बिरानी ग्वार की बीजांत करनी है वे फास्फोरस की आधी मात्रा को ही प्रयोग करना है। अब बात करें किसान भाइयों कीट रोग नियंत्रण के बारे में, क्योंकि अब कपास जैसी फसल का मान जड़ गलन रोग को प्रकोप ज़्यादा दिखाई देवे। इन वास्ते किसान भाइयों पहली सिंचाई गए 8 से 10 दिन बाद आपा खेत में नज़र मार के देखा तो आपने कई पौधा मुरझाएड़ा दिखाई देवेगा। तो यह समझ जानो है कि जड़ गलन रोग जो को प्रकोप है वो हो गयो। तो इंगर नियंत्रण वास्ते मुरझाएड़ा पौधा ने जड़ सहित उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। यही नरमे की बात करें तो ई टाइम लीफ कर्ल नाम को रोग जको है इनका लक्षण दिखाई देने लग जाए। ई रोग से ग्रसित पौधा स्वस्थ पौधा से काफ़ी छोटा रह जाए और पौधे की पत्तियां प्याले नुमा दिखाई देने लग जाए। ऐसा लक्षण दिखाई देने पर पौधा ने उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। और खेत के चारों मेर सड़क या नहरांग आसपास है पीली बूटी भांग भांखड़ी जैसा खरपतवार ने भी नष्ट कर देना चाहिए। भाई लोगों, अब बात करें ये मौके बीजेडी फसला में लागन वाला कीट रोग के बारे में, क्योंकि जिया ही फसलां बंटवार लेने लगे तो इनके सागे कई तरह का रोग कीट भी फसल में लागना शुरू हो जाए। जी हम बात करें धान की फसल में झुलसा रोग की, ये रोग के प्रकोप से पौधा झुलसना शुरू हो जाए। जे भाई लोगों आप इनको पूरी तरह जाप तो ना करा तो पूरी फसल चौपट हो जाए। इन वास्ते पंजीरी बिजाई से पहली धान का बीज ने 10% नमक के घोल में यानी 1 किलो नमक 10 लीटर पानी सागे घोल बना के बीज उपचारित कर लेवा। बाद में स्वस्थ बीज ने साफ पानी से धोके स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम या फिर प्लांटोमाइसिन 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के 6 किलो बीज की दर से 12 घंटा तक भिगो के रखा। और बाद में बीज ने 24 घंटा तक टाट या बोरी में लपेट के रख देवा। तो यही तरिया धान को बीज आप उपचारित कर सका। यहीं बागवानी में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बागवानी में जिया फल गिरने की समस्या, छाल जलन की समस्या, पत्तियां को झुलसनो ये इसी समस्या ज़्यादा रेवे। इनके सागे सागे पानी सिंचाई की भी ज़रूरत को ध्यान रखना है। पौधा ने तेज गर्मी से बचावन खातर पौधा के मुख्य तना पर चुने को और नीले थोथे को लेप करना जरूरी है। लेप बनाने को तरीको थाने बता देवा कि कॉपर सल्फेट 2.5 किलोग्राम, बुजड़ो चुनो 5 किलोग्राम और सरेस 0.5 किलोग्राम ने 30 लीटर पानी में घोल बना के लेप तैयार अपा कर सका। इनके अलावा बागवानी में भी पानी देना जरूरी है। पौधा में पानी की मात्रा बनाए रखनी है। जब बूंद बूंद सिंचाई से पानी देवन लग रहा हाँ तो पौधे की उम्र के हिसाब से पानी देना है। किसान भाइयों, जे आपने 12 मासी नींबू को बाग लगा रखे है तो अब ई मौके नींबू की 2.5 सेंटीमीटर हार्डवुड टहनियाँ यानी जकी टहनियाँ की लकड़ी पक्की होगी बाने 5 से 8 इंच लंबी काट के कलम रोपण कर देनी चाहिए। तो आप बातों को ध्यान रख के आप अपनी फसल, चाहे वह नरमे की फसल होवे, चाहे वह धान की होवे या ग्वार की फसल होवे या फिर बागवानी होवे, जे आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगा तो फसल की बढ़वार के सागे सागे अच्छी पैदावार और अच्छी आमदन भी हो सी। किसान भाइयों, अपने ही क्षेत्र में किसान भाई लोग जगह भांत भांत की फसलें बीजें

0: अपना किसान भाई कम लागत में ज़्यादा पैदावार लेने की सोचे, लेकिन इनके बावजूद भी खेती करता टाइम कई तरियांगी चूक हो जाए, बांगी वजह से अपनों खर्चों भी लाग जाए और पैदावार भी पूरी कौन मिल रहा है। इन वास्ते किसान भाइयों टाइम टाइम पर अपना कृषि वैज्ञानिक या कृषि विशेषज्ञ जकी राय देवे या फिर खेती करना का कोई नया तौर तरीका बतावे। जे आप बांगे हिसाब से खेती करा तो आपने अच्छी पैदावार के सागे सागे अच्छा मुनाफा भी मिले और आप जो खेती पर खर्चो करा तो बिंगी लागत में भी कमी आवे। यानी आप मोटे तौर पर यहाँ कह सका जे आप तकनीक पर आधारित खेती करा तो कम लागत में अच्छा मुनाफो कमा सका। जे टाइम पर आपने बुआई करनी चाहिए, क्योंकि जे आप टाइम पर बिजाई कर सा तो आपने उत्पादन पूरा मिलेगा और बिजाई करता टाइम अच्छा प्रमाणित उन्नत बीज ही आप बीजा जिसे आप 20-25% तक उपज बढ़ा सका। किसान भाइयों कई बार यहाँ हुए कि आप बीज ने उपचारित करे बिना ही बीज दें, जगह की वजह से कई तरियांगा बीज जनित रोग है जका अपनी खड़ी फसल में लाग जाए। जे आप कम खर्चा कमा निरोग और स्वस्थ फसल लेनी है तो बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके अलावा माटी की जांच करवा गए बिंगे हिसाब से आप फसल बीजा और जितनी जरूरत है बिंगे हिसाब से ही यूरिया है या अन्य उर्वरक है बे नाखा तो इंच फालतू में ही उपयोग होने वाला उर्वरक पर लागन वालों 200% आप बचा सका। तो आ बातों को ध्यान रखा तो आप अच्छी उपज अच्छी पैदावार ले सका। और अब मैं खेत का निचालू सा राम राम सा राम राम।
1: इस माह के कृषि कार्य खेत खिलान कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देशवासियों के जीवन को अधिक सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पहल देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेंस से प्रशासन और जनसेवाओं की पहुंच में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और यूपीआई जैसी पहलों से आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सिक्योरिटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में एआई और मशीन लर्निंग एआईएमएल नीति लागू की गई है। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल जन शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं तथा राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार

0: को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए हादसे की विस्तृत जांच के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल का गठन किया है। जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने दल को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज अल सुबह धनावड़ा के पास एक स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से बस में सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। मॉनसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्य जीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन हो सकेगा। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया भी पर्यटकों के लिए बंद होगा, हालांकि बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हुआ पर्यटन सत्र कल समाप्त हो गया। बीते पर्यटन सत्र में 6,77,000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया, जिससे राज्य सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनका दिन के कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को अंकिता अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, भारत में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच पेड़ों और वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। सखियों, इस उत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा की गई थी। यह हमें वनों की कटाई को रोकना, हरियाली को बढ़ाना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने को प्रोत्साहित करता है। सखियों, बातें तो और भी करेंगे, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

सखियों, भारत में जुलाई का महीना मानसून की शुरुआत का प्रतीक होता है। बारिश के मौसम में मिट्टी में नमी होती है, जिससे लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना अन्य महीनों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। सखियों, यह त्यौहार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद करता है। इस सप्ताह के दौरान स्कूल, कॉलेज, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थाएं मिलकर आम जनता को पौधे वितरित करती हैं और वृक्षारोपण अभियान चलते हैं। तो आप भी अपने घर पर या आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को करिए हरा भरा और लीजिए आनंद इस प्यारे से गीत का।

सखियों, नारी परिवार की धुरी होती है। नारी के बिना तो घर अधूरा है। घर की खुशियों और सकारात्मकता से भरने में नारी की भूमिका किसी भी अन्य सदस्य से कहीं अधिक और गहरी होती है। वह घर की भावनात्मक नींव होती है। नारी अपनी ममता, धैर्य और सूझबूझ से घर को मकान से घर में बदल देती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, त्याग और अपनापन बनाए रखने में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। वह सभी का तनाव कम करके मानसिक शांति प्रदान करती हैं। एक गृहिणी घर की आय का सही उपयोग करते हुए पूरे परिवार की ज़रूरतों, खान पान और अनुशासन को संतुलित करती हैं। सखियों, चर्चा का विषय जारी रहेगा, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

सखियों, हम चर्चा कर रहे हैं घर का माहौल खुशनुमा बनाने में नारी की भूमिका के बारे में। सखियों, नारी बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन जीने की कला सिखाने में माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। घर के बुजुर्गों की सेहत, ज़रूरतों का ध्यान रखकर वे

परिवार को एकजुट और सुरक्षित रखती है। वैसे तो हर घर को खुशनुमा बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी में सबसे बड़ी भूमिका एक नारी की ही होती है। तो इस पर मुझे एक शायरी याद आ रही है बहनों। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप सभी अपने घर को स्वर्ग बनाएं, इसी आशा के साथ सुनते हैं एक और गीत।

सखियों, संतुलित आहार मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल्स प्रदान करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है और इससे वजन भी नियंत्रित रहता है। लेकिन वजन कम करने के लिए कुछ लोग तो खाना पीना ही छोड़ देते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में खनिज और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं और इससे वीकनेस भी आ जाती है। दरअसल मैंने लोग समझ ही नहीं पाते कि डाइटिंग और संतुलित आहार में अंतर क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह डाइटिंग संतुलित आहार से भिन्न है। सखियों, डाइटिंग का मुख्य लक्ष्य वजन घटाना, बढ़ाना या शरीर के आकार में बदलाव करना होता है, जबकि संतुलित आहार का लक्ष्य शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ रखना है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और सभी अंग ठीक से काम करें। सखियों, बातें तो और भी होंगी, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

क्यों डाइटिंग अक्सर कठोर होती है? इसमें कैलोरी गिनना या कुछ विशेष खाद्य पदार्थों जैसे कार्ब्स या फैट को पूरी तरह से छोड़ना शामिल हो सकता है, जबकि संतुलित आहार बहुत लचीला और प्राकृतिक होता है। इसमें सभी खाद्य समूह जैसे अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल और दूध का संतुलन शामिल होता है। किसी भी भोजन को अपराध बोध के बिना खाया जा सकता है। सखियों, डाइटिंग अस्थाई होती है, जैसे 15 दिन, 1 महीने का प्लान और लक्ष्य पूरा होने के बाद लोग अक्सर इसे छोड़ देते हैं, जबकि संतुलित आहार जीवन भर अपनाने वाली आदत है। इससे हमेशा अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। सखियों, डाइटिंग अगर गलत तरीके से की गई तो शरीर में कमजोरी, थकान, बालों का झड़ना और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जबकि संतुलित आहार में त्वचा में निखार, ऊर्जा का स्तर स्थिर रहना और वजन का प्राकृतिक रूप से नियंत्रण में रहना सुनिश्चित होता है। एक बेहतर जीवन के लिए डाइटिंग की बजाय संतुलित आहार अपनाना सबसे सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प माना जाता है। सखियो, आप डाइटिंग भी एक डाइटिशियन की देखरेख में ही करें ताकि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद लें इस प्यारे से गीत का।

सखियों, हम सभी उपभोक्ता हैं। वह व्यक्ति जो चीज़ों को पैसे देकर खरीदता है उपभोक्ता है। इसलिए उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना और मूल्य एवं गुणवत्ता के मामले में धोखाधड़ी का सामना ना करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता अधिकार की औपचारिक शुरुआत 15 मार्च 1962 को अमेरिका से हुई थी। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत ग्राहकों को 6 बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, ऐसे उत्पाद या सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक या हानिकारक हो सकते हैं। सखियों, दूसरा है सूचना का अधिकार, इसमें खरीदे जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार है। तीसरा है चुनने का अधिकार, इस प्रतिस्पर्धा कीमतों पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं में से अपनी पसंद का सामान चुनने का अवसर हम सभी को है। सखियों, चर्चा का विषय जारी रहेगा, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध शिकायत करने और नुकसान होने पर उचित मुआवजा या वापसी प्राप्त करने का अधिकार देता है। छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस तरह मैंने हम भी अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल सही रूप से कर सकें। और लीजिए आनंद एक और गीत का।

क्यों हम चर्चा कर रहे हैं उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में। चौथा है सुने जाने का अधिकार। ग्राहकों की शिकायतों और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर उचित मंचों पर उनकी बात सुनी जाने का अधिकार प्रदान करता है। पांचवा है निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। यह शोषण या

अभी महिला जगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब आप बारी बारी से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन समझौतों में डिजिटल पहचान डिजिटल भुगतान डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात सिंगापुर फ्रांस मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है आधार डिजीलॉकर कोविन गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस दीक्षा उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है विकसित भारत रोजगार और आजीविका

0: गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ

0: प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली हरियाणा

0: चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर।

0: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए फिल्म संगीत सुनिए।

सभी सुनने वालों का नमस्कार। संजय बैद की ओर से श्रोताओं, अभी आपने बांसुरी की एक मीठी सी धुन सुनी। और जब भी बांसुरी का नाम हमारे जहन में आता है तो हमारे सामने सिर्फ एक नाम कौन था है, और वो है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का। आज सौभाग्य से उनका जन्मदिन भी है। आज ही के दिन 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। हालांकि उनके पिता पहलवान थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी पहलवानी करे, वो उन्हें अखाड़े में भी ले जाया करते थे, लेकिन उनकी रुचि पहलवानी में नहीं थी, उनके तो रग रग में संगीत बसा था। अपनी पिता की मर्जी के खिलाफ उन्होंने संगीत सीखना आरंभ कर दिया। अपने पड़ोसी पंडित राजाराम से उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी और उसके बाद बांसुरी सीखने के लिए वो वाराणसी के पंडित भोलानाथ प्रसन्ना के पास चले गए। संगीत सीखने के बाद काफी समय उन्होंने आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया। संगीत उनके रग रग में भरा था और उसी का परिणाम है कि जब भी बांसुरी वादन की बात आती है तो हमें हरि प्रसाद चौरसिया नजर आते हैं। आज के इस फिल्म संगीत प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसे गीत आपके लिए चुने हैं जिनका संगीत हरि प्रसाद चौरसिया ने दिया, लेकिन फिल्म संगीत के लिए उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा जो एक मशहूर संतूर वादक हैं उनके साथ संगीत की जोड़ी बनाई और अनेक फिल्मों में अपने मधुर संगीत से सुनने वालों को मंत्रमुग्ध किया। इसी शिवहरि की जोड़ी के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी नगमे आज हम आपको सुनवा रहे हैं। ये पहला गीत हमने चुना है फिल्म साहिबां से, जिस गीत को गाया हरिहरन ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

हरी प्रसाद चौरसिया ने बाबा अलाउद्दीन खान की पुत्री अन्नपूर्णा देवी से भी संगीत सीखा, लेकिन इस शर्त पर कि उन्होंने जो भी पहले सीखा हुआ है उसे भूलना होगा और नए सिरे से संगीत की शिक्षा लेनी होगी। हरिप्रसाद जी ने इस बात को स्वीकार किया और प्रतिबद्धता दिखाते हुए उन्होंने अन्नपूर्णा देवी से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। शिव हरि की जोड़ी ने अनेक फिल्मों में संगीत दिया। काफी कम लोग जानते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया ने भुवनेश्वर मिश्रा के साथ भी भुवन हरि नाम से एक जोड़ी बनाई थी, जिसने कई उड़िया फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया था। काफी गाने इसमें लोकप्रिय हुए थे। उड़िया रेडियो में भी हरिप्रसाद चौरसिया ने अपना संगीत दिया। अनेक पुरस्कार संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें दिए गए, जिसकी चर्चा इस गीत के बाद करेंगे। अब हम आपको सुना देते हैं लम्हे फिल्म का नगमा, जिसे लता मंगेशकर के साथ हरिहरन ने अपनी आवाज़ दी है। ये गीत भी आनंद बख्शी ने लिखा।

पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को मिले सम्मानों की यदि बात करें तो उन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 में कोणार्क सम्मान के साथ साथ पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1994 में यश भारती सम्मान से उन्हें नवाजा गया और पुनः 2000 में पद्म विभूषण से उन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें हाफिज अली खान पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, अक्षय सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार और उन्हें उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय के द्वारा 2008 में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। उत्कल विश्वविद्यालय ने भी उन्हें 2011 में मानद डिग्री प्रदान की। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हरि प्रसाद चौरसिया और उनका संगीत किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने बांसुरी वादन से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी उनकी बांसुरी की धूम मच रही है। उन्हीं की जोड़ी का संगीत बत किया चांदनी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, जिसे आशा भोंसले के साथ विनोद राठौड़ ने आवाज़ दी है। इस गीत को भी आनंद बख्शी ने लिखा।

हरि प्रसाद चौरसिया ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ एक तेलुगु फिल्म में भी संगीत दिया था जिसका नाम था सिरेविनेला। इस फिल्म में जो नायक की भूमिका थी वो इन्हीं के जीवन से प्रेरित थी और ये भूमिका निभाई थी सर्व दमन बनर्जी ने। बांसुरी वादन हरिप्रसाद चौरसिया का भी था। इसके अलावा इन्होंने एच डी बर्मन और आर डी बर्मन की कुछ फिल्मों में भी बांसुरी वादन किया। इनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो उसमें चांदनी, सिलसिला, लम्हे, डर, साहिबा, परंपरा, विजय, फासले, ये ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने शिव हरि की जोड़ी के रूप में पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर संगीत दिया। यदि सुप्रसिद्ध होली गीत का जिक्र करें तो उसमें इन्हीं की संगीतबद्ध की दो फिल्मों का नाम आता है, जिसमें पहला है सिलसिला और दूसरा डर। चलते चलते डर फिल्म का गीत हम आपको सुनवा देते हैं, जिस गीत को गाया अलका याग्निक, सुदेश भोंसले, विनोद राठौड़ और साथियों ने। ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा, संगीत शिव हरि का।

0: तू राधा में कान्हा?
1: ना ना ना ना।
0: क्या?
1: बिजली और बादल,
0: तुम दोनों हो पागल।
1: है खूब ये जोड़ी,
0: बस देर है थोड़ी।
1: तुम जीवन साथी,
2: हम सब बाराती।
1: रंगों की डोली
0: ले आई होली,
1: भर लो पिचकारी।

0: मैं भूला रास्ता,
1: रास्ते पे आ जा।
0: मैं थाम लूं भैया,
1: मत छेड़ो सैया।
0: तुम दिल मत तोड़ो,
1: तुम आंचल छोड़ो।
0: तुम काहे रूठी,
1: मेरी चूड़ी टूटी,
0: दिल मेरा टूटा।
1: चल हट जा झूठा,
0: तू नाच में गाऊं,
1: तू बैठ में जाऊं।
0: मुश्किल है जाना,
1: तू है दीवाना।
0: मुझे अंग लगा ले,
1: बस रंग लगा ले
0: नीला के।

डर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को समर्पित था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम।

सामिन, आपको बता दें, इससे कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब वीरेंद्र पटवारी का तहरीर करदा ड्रामा ग्रहण। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 बरस के दौरान गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमले किए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 वर्षों में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमत तक रसाई के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI निज़ाम में एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़रात और फलाही खिदमत तक रसाई को वसअत दी है। भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिल तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निज़ाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शिनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खिदमात की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसा इंटरफेस UPI अब 8 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। इसी तरह आधार, डिजी लॉकर को कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारत ने 2023 में G20 की सदारत के दौरान इंडिया स्टेक ग्लोबल और ग्लोबल DPI रिपोजिटरी भी शुरू की, जिससे भारतीय डिजिटल हल आलमी सतह पर मजीद काबिल रसाई बन गए। अशिया व खिदमत टैक्स GST की वसूलियाबी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपए हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रुपए से साल ब साल 13.9% का इजाफा है। वजारत खजाना की जानिब से जारी आर्जी आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई घरेलू GST की वसूलियाबी 1,34,774 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले से 6.5% ज्यादा है। जून के महीने में अदायगी के UPI निज़ाम के तहत लेन देन में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 23% का इजाफा हुआ और ये 2,20,00,000,000 तक पहुंच गया, जबकि UPI लेन देन की मालियत 20% बढ़कर पिछले महीने 28,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। अदायगियों से मुतालिक भारत की कौमी कारपोरेशन की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक औसत बुनियाद पर जून के महीने में UPI के तहत रोजाना तकरीबन 75,70,00,000 लेन देन हुए। 8 से ज्यादा मुल्कों में UPI का इस्तेमाल हो रहा है, इनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल है। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी की जरूरत पर जोर दिया है। फौजी अमले के 31वें सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में बाख्तियार हो और हर सूरत हाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो। उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में

और सामिन लीजिए, जब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है आर डी बर्मन ने, फिल्म है 1942 आ लव स्टोरी।

और सावन लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में आशिकी फिल्म का नगमा, नगमा निगार समीर, मौसीकार नदीम शरवन।

इस तरह के साथी आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेशे खिदमत है जनाब वीरेंद्र पटवारी का तहरीर का दर ड्रामा ग्रहण।

0: जय वाह वाह मेरे प्यारे पतिदेव, आप ग्रेट हो। नहीं नहीं ग्रेट नहीं, यू आर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट।
1: ये कसीदा है या तंज?
0: तंज क्यों? बल्कि कसीदा ही नहीं माय डियर हस्बैंड, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या फिल्म बनाई है, वाह वाह क्या बात है।
1: फिल्म नहीं, डॉक्टर ड्रामा।
0: चलो वही सही। तुम तो नाराज हो जाते हो, अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ना, मैं आपकी बीवी हूँ पद्मा, हूँ ना। अब कोई मुझे भाभी का नाम दे तो अरे तब भी मैं आपकी बीवी हूँ, हूँ ना। वैसे ही अगर मैंने आपकी डॉक्यू ड्रामा को फिल्म का नाम दे दिया तो खैर छोड़ो ये सब। वैसे आपकी क्रिएशन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू। अच्छा चलो अब खाना खा ले, चौथी बार गर्म कर चुकी हूँ।
1: पद्मा तुम खा लो, मैं एक बार फिर
0: चार बार तो मैं भी देख चुकी हूँ आपकी डॉक्यू ड्रामा फिल्म।
1: पद्मा कुछ तो है जिसकी वजह से ग्रहण लग चुका है, ग्रहण को हटा दूंगा तब मेरी कोशिश कामयाब हो सकती है, वरना नहीं।
0: तो आप टाइटल बदलना चाहते हैं?
1: अगर टाइटल पर ग्रहण लगा है तो ग्रहण हटाना होगा।
0: जय, फिल्म अच्छी है, मौजू अच्छा है, अस्लूब अच्छा है और
1: पद्मा मैंने तुमसे राय नहीं मदद मांग ली है, ठीक है? अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं सही, लेकिन
0: अच्छा अच्छा बता तो दो कि मुझे करना क्या है।
1: गीत गोविंदा लिखने वाले जयदेव की बीवी का नाम भी पद्मा था, पद्मावती।
0: मालूम है, और ये भी मालूम है कि वो नाचनी थी और जयदेव इंस्पायर होकर लिखता रहता था। चलो चले
1: कहा?
0: अरे आप इस एडिटिंग रूम को छोड़कर मेरे साथ मंदिर चलो, मैं नाचती रहूंगी और अपनी नई फिल्म की फिल्मकारी कर लेना। गीत गाते गाते

0: नाराज हो गए। पतिदेव आपकी फिल्म सॉरी डॉक्यूड्रामा मुकम्मल है, अच्छी है, वेरी मीनिंगफुल एंड इम्प्रेसिव। हर फ्रेम हर सेगमेंट उजला है, या कहीं भी अगर तारीख धब्बा नजर आता है तो ग्रहण के बारे में सोचा जा सकता है।
1: ऐसा तुम कह रही हो? तुम जिन लोगों को जयदेव से कुछ तवक्कात है वो अपने जावियों से मेरी फिल्म देख लेंगे।
0: जयदेव, सच का चेहरा एक दायरे की मानंद होता है और दायरा हर जावे से दायरा ही नजर आता है। सच की तस्वीरें दिखाकर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। Let's conclude. Please, कुछ खा पी लें।
1: फिर वो बात। शाम को नाश्ता, लंच, ब्रंच और डिनर कर लेंगे। ऑल इन वन, ऑल इन वन नोश फरमाएंगे।
0: शाम को? अरे रात का पहला पहर भी खत्म होने जा रहा है। तुम्हारे वो कद्रदान जो कुत्ते के पिल्ले और इंसान के बच्चे को किसी 5 सितारा होटल से फेंका हुआ झूठा खाना एक साथ खाते हुए दिखाकर जहां अजीम फिल्मकार होने का दावा करते हैं,
1: अपने आप को साबित करते हैं, इनामात और एजाजात लेते रहते हैं।
0: हाँ हाँ, उनकी ही बात कर रही हूँ। वही तो है जो पुरसुकून झील की सतह पर कंकर फेंक कर दायरे पैदा कर देते हैं, एक दूसरे का ताकुब करने वाले दायरे, जिनको देखकर आप जैसे माशरे की सही तर्जुमानी करने वाले कलमकारों या फिल्मकारों की सोच की नहज बदल देते हैं। झील सामने होती है मगर संगलाख जमीन से पानी निकालने की बातें करते हैं।
1: तुम कहना क्या चाहती हो?
0: वही जो तुम रिबाउंड करके वापस कर रहे हो।
1: ठीक है, बजने दो।
0: अरे रात को कोई बिना वजह फोन नहीं करता, खासतौर पर अच्छे लोग सनसनीखेज माहौल पैदा करने से गुरेज करते हैं। तुम अपनी फिल्म एक बार क्या 10 बार और देख लो, ग्रहण की खोज करो। मैं ये देख लूंगी कि दिन भर जो फोन की घंटियां बजती रही वो एक ही शख्स की तो नहीं है।
1: तुम अगर एडिटिंग रूम से बाहर गई तो मैं दरवाजा लॉक करके तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा।
0: क्या? ये सुनकर आई एम शॉक्ड, नॉट सरप्राइज्ड। हेलो हेलो नटराज अंकल, नमस्कार। खैरियत तो है ना?
2: अरे हम सब ठीक है बेटी, तुम लोग बाहर गए थे क्या?
0: नहीं तो अंकल। अच्छा ये बताइए, आंटी ठीक है ना?
2: अरे पद्मा बेटी, सब में वो भी शामिल है। सुनो मैं दोपहर से फोन कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो वो आप थे। अरे अंकल, आप घर आ जाते तो शायद आपका शागिर्द अपने जावियों के चक्कर से बाहर निकल आता।
2: मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। पद्मा बेटी, ये ग्रहों का चक्कर ये बचपन से सुनते आए हैं, ये जावियों का चक्कर क्या है?
0: अंकल, जय अपने ऑब्जेक्ट को दूसरों के जावियों से देख देख कर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहाँ से निकल ही नहीं पाता।
2: ठीक है, जय को फोन दो।
0: अंकल, जय अपने एडिटिंग रूम में है, बाहर आता ही नहीं।
2: बहुत ही डिवोशन के साथ काम करता है। भाई जी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है क्या?
0: नहीं अंकल, वही पुराना प्रोजेक्ट है।
2: जय ने मुझे इतला दी थी कि वो फिल्म मुकम्मल हो चुकी है, मैं उसी फिल्म के बारे में जय से बात करना चाहता हूँ।
0: क्यों अंकल?
2: अरे जय अपनी फिल्म को इंडियन पैनोरमा में बतौर एंट्री भेजना चाहता है, क्या फिल्म में कोई प्रॉब्लम है?
0: नहीं नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल सिचुएशंस, रियल कैरेक्टर्स, दिखावट के लिए कोई बनावट या सजावट नहीं। लेकिन जयदेव ने हर सेगमेंट इतनी खूबी से फिल्माया है अंकल कि लगता है जैसे एनेक्टेड सीन्स हैं।
2: अच्छा ये बताओ, तुमने देखी है क्या?
0: अंकल, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। आज भी सुबह से लेकर गई रात तक बार बार वही फिल्म तो देख रहे थे। अंकल, जय इस वक्त भी वही फिल्म देख रहा है।
2: क्यों क्यों?
0: चंद रोज पहले एडिटिंग खत्म करने के बाद जब अपनी फिल्म अपने एक दोस्त को दिखा दी तो उन्होंने जयदेव की खूब तारीफ की, लेकिन
2: लेकिन क्या बेटी?
0: लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ है मगर जयदेव टच नहीं है।
2: समझ गया समझ गया भाई, ऐसे लोग अक्सर ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके क्रिएटिव माइंड में इंतजार पैदा करके अपने लिए एक मुकाम पैदा कर देते हैं। वी शुडंट टेक सच कमेंट सीरियसली। देखो अजय से कह दो कि वो

0: पहुंचे मुंबई के पते पर फिल्म के सिनॉप्सिस फैक्स कर दे
1: जी।
0: कल प्रपोजल सबमिट करने की आखिरी तारीख है।
1: अंकल आप जय को मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि फिल्म में किसी शेड या नोट की कमी है, इसलिए वो सिनॉप्सिस नहीं देगा।
0: हाँ मैं भी जानता हूँ कि उसकी जिद की पकड़ बहुत मजबूत है, मगर किया क्या जाए बेटी।
1: अंकल कई बार फिल्म देखकर मुझे सारी फिल्म ज़बानी याद है, फिल्म से फ्रेम तक, मुकालमे, साथी असरात, सब सब कुछ अंकल।
0: बता बेटी फिर तुम लोग सिनॉप्सिस देखकर सुबह सवेरे फैक्स कर दो, मैं जब दिल्ली आऊंगा।
1: अंकल आप
0: अरे घबरा गई
1: वो।
0: अरे बेटी टेंशन मत लो, जय को समझा दूंगा कि पद्मा ने उसके सच को सही डायरेक्शन दी है। अरे ये तुम ऐसा करो मुझे, अरे फ्रेम बाय फ्रेम का नरेशन दे दो, मैं खुद सिनॉप्सिस लिख दूंगा। इजी टॉक है भाई।
1: अंकल जय समझ रहा है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ।
0: अरे मैं भी तुम्हारी आंटी को डिवॉइड ऑफ क्रिएटिविटी, नॉन क्रिएटिव वगैरह वगैरह कहता रहता हूँ। बेटी सच तो ये है, समझाने वाले से समझने वाला ज्यादा जहीन हो तो बात बन जाती है।
1: हाँ अंकल वो बात तो है। वैसे अंकल जय ने फिल्म की शुरुआत बता रावी की है, और इंसानी ख्वाहिशात, दबी ख्वाहिशात, जरूरियात जिंदगी, हालात की सितम जरीफी, फितरत, खसलत वगैरह वगैरह के बारे में तमहीद बांधकर सहर से गई रात तक का एक कोलाज बनाकर पेश किया है। मुख्तलिफ किरदारों से एक सवाल पूछकर इंडिविजुअल सेगमेंट की शुरुआत की है, और अंकल पहले सेगमेंट में एक नीम पागल से गुफ्तगू की है। ये नीम पागल नौजवान है, खूब रूह है, और वो एक मंदिर के अहाते में भजन गाने या मंत्रों का जाप करने के बजाय भगवान को शेर सुना रहा है। अब जयदेव और इस किरदार की गुफ्तगू सुनाती हूँ अंकल। वक्त सहर, डायलॉग टू डायलॉग, फ्रेम टू फ्रेम।
2: आप था? मैं ही तो हूँ, मेरा कत्ल हुआ है ना, इसलिए मेरा नाम मकतूल है। बात अपने तक ही रखना भाई, वरना मुझे यहाँ से निकाला जाएगा। अच्छा आप चले जाओ, मैंने प्रार्थना करनी है, यानी भगवान से बराहे रास्त गुफ्तगू करनी है।
3: बाप? हाँ मेरे बाप, मैं नीम पागल नहीं हूँ, मुकम्मल पागल हुआ। मैं भगवान को मंत्र नहीं सुनाता, शेर सुनाता हूँ। वही तो है जो मुझे रोके टोके बगैर सुनता है। बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त। बात अपने तक ही रखना भाई, किसी को कानों कान खबर ना हो, मैं एक शायर हूँ।
4: अपने तक ये बात भी रख दूंगा कि आप अपने शेर भगवान को सुनाते हैं।
3: या जान गए मगर शायर को पहचान गए।
4: मैं एक शायर हूँ भाई।
2: आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, बात अपने तक ही रखना भाई।
4: अजी किसी को खबर तक नहीं होने दूंगा।
3: अरे वाह वाह वाह, आप ये सब जानते हैं।
4: बिला शुबा
2: मेरी भगवान से बात हुई थी एक दिन, मगर पहचान गया कि किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, फिर भी भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजकर अपने भक्त पर एहसान किया है। जैसे जैसे वरना जिंदगी कट रही थी, ऐसे ऐसे एक बेजुर्म सजा हो। जैसे जैसे जैसे
4: आप शायर हो तो अपने शेर क्यों नहीं कहते, मेरा मतलब है कि फरमाते।
2: कैसे सुना दू, अपने तक ये बात रखना भाई। जब मेरा तखल्लुस शफक था, तब मैं उफक पर नजर आया करता था। फिर एक शायर ने दौलत का सहारा लेकर छीन ली मेरी शायरी की कुलियात, कुलियात, कुलियात।
4: ये जानकर अफसोस हुआ, लेकिन आपने तब तक कुछ क्यों नहीं
2: किया? किया बहुत किया, लेकिन मेरी आवाज दबाई गई।

0: खत्म हुआ तो मकतूल बन गया।
1: अरे बाबू, ये दुनिया एक सर्कस है, शो है 3 घंटे का, जालिम जुल्म और मजलूम का। अमीर ताकतवर रिंग मास्टर है जो शेरे बबर को नचाता है।
2: क्या बात है।
1: लेकिन मैं हैवान नहीं हूं ना, उन्होंने एक गरीब शायर की शायरी चुरा ली।
2: चोर कहीं के।
1: मैंने तब से शोहरत याफ्ता सौदा का कलाम अपनाया है। अच्छा किया ना।
2: बहुत अच्छा किया,
1: मगर ये बात अपने तक ही रखना भाई, वरना गजब हो जाएगा।
2: अरे,
1: गरीबी एक गुनाह है ना बाबू।
2: लेकिन दौलत मिल जाए तो गरीबी की जड़ें भी नाबूद हो जाती हैं, ये सही है ना?
1: हाँ हाँ सही है, सही है।
2: अच्छा सुनिए, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो आप क्या करेंगे?
1: 1 करोड़? सिर्फ 20,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए।
2: क्या करोगे ये रकम लेकर?
1: अपनी खुलियात शाया करके शफक को ग्रहण से आजाद कर दूंगा, मकतूल को नया जन्म दूंगा। हाँ, नया जन्म।
3: जयदेव ने इस शॉट को डिसॉल्व करके एक सौजीदा मौसीकी का फेड इन किया है और एक अलामती शॉट का इस्तेमाल करके ग्रहण सदा सूरज को दिखाया है।
4: हो, बहुत हो। अच्छा पद्मू बेटी, अगले सेगमेंट में किसका इंटरव्यू दिखाया है?
3: एक सियासी लीडर का मुख्तसर मगर दिलचस्प इंटरव्यू।
2: सड़क पर थे सभी जुलूस में शामिल हुए।
1: आपको कोई एतराज है?
2: नहीं, एतराज क्यों हो? ये सदाबहार कौन है?
1: आपने नारे नहीं सुन लिए क्या?
2: हाँ, क्यों?
1: गरीबों का मसीहा यानी सदाबहार।
2: सदाबहार ये नाम है या तखल्लुस?
1: तकल्लुस शायद लोग खुद ही अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, जबकि लीडरों को लोग अलकाब से नवाजते हैं।
2: आपके भी लीडर हैं?
1: भी मतलब?
2: नहीं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो
1: भी आप कहना क्या चाहते हैं?
2: देखिए, कड़ाके की सर्दी में ये आपने फटा कम्बल ओढ़ लिया है, जाहिर है कि आप भी।
1: हाँ, मैं भी गरीब हूँ, हमारा मुल्क ही गरीब है। बेशतर लोगों के पास ओढ़ने के लिए फटी कंबल भी नहीं होती, बल्कि तन ढांपने के लिए कपड़े नहीं होते, और उस पर तुर्रा ये कि फुटपाथ पर सर्द हवाएं रोकने के लिए ना दीवारें होती हैं और ना बारिश से बचाव के लिए छत होती है।
2: ये एक तल्ख हकीकत है, हम दोनों की सोच मिलती जुलती है, जाहिर है समझ और ख्यालात भी एक जैसे होने चाहिए।
1: मेरी तरफ से हाँ है। उबल खत्म के गरीबों की बदहाली देखकर आप भी तड़प उठते होंगे। अक्सर दिल में एक हूक सी उठती होगी, फिर दर्द होता होगा, दर्द नहीं कर्म का एहसास आपके वजूद को झटके देता रहता होगा।
2: अक्सर ऐसी कैफियत जहन पर तारी होती रहती है।
1: अगर ये आपके दिल की आवाज है तो कुछ करते क्यों नहीं?
2: कुछ करूं? तो मान लीजिए अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं तो?
1: तो मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर भी नहीं कहूंगा, बल्कि रकम लेकर ये भी नहीं कहूंगा कि इसकी क्या जरूरत है। रकम ब्लैक में दे रहे हो या व्हाइट में?
2: ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है?
1: तो नहीं, व्हाइट में दोगे तो 40 लाख टैक्स में निकल जाएंगे।
2: समझ गया।
1: हाँ।
2: समझ गया मैं। फिर ब्लैक में दूंगा। ये बताइए कि आप रकम का क्या करेंगे?
1: सदा बहाल से पूछ रहे हो कि रकम का क्या करोगे?
2: जी जी जी, जी।
1: हाँ, ब्लैक में देने का आपको बोनस भी मिलेगा। खुलकर बात कर रहा हूँ साहब। हाँ
2: जी बिल्कुल,
1: मैं आपको 40 लाख का चेक दूंगा जो व्हाइट में होंगे।
2: आप कौन हैं?
1: मैंने सोचा कि आप अब तक जान गए होंगे कि मैं सदाबहार हूं, गरीबों का

0: पद्मा
1: जी,
0: जय ने क्या सेगमेंट को यहाँ कंक्लूड किया है?
1: नहीं नहीं अंकल, जय ने अपना डायरेक्टर पंच दिया है ना। सदाबहार के मुकालमे शाम को घराना के साथ ही एक लंबी विदेशी कार हॉर्न बजाकर खड़ी हो जाती है। सदाबहार अपने फटे कंबल को कार में रखकर कार से एक शॉल निकालकर ओढ़ लेता है, फिर कार में बैठकर चला जाता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है! मुझे मेरे कदरदानों ने फिल्मों के द्रोणाचार्य का लकब दिया है। मेरे ख्याल में जय खुद ही साबित कर देगा कि वो दोनों एक साथ
1: अर्जुन पांडव हैं। अंकल, अगला सेगमेंट तो और भी दिलचस्प है।
0: अच्छा?
1: हाँ, जय ने ये सेगमेंट जितनी खूबसूरती और फितरी अंदाज में फिल्माया है ना, वो अपनी जगह। और वो कहानी अंकल मैं फिर कभी सुनाऊंगी। पहले ये बता दूं कि जय कश्मीर में वहां के दस्तकारों, सियाहत से ताल्लुक रखने वाले होटल वालों, शिकारे चलाने वालों और हाउस बोट के मालिकों पर अपनी सारी तवज्जो देना चाहते थे, मगर इंटरव्यू किया एक मजलूम औरत का।

0: क्या आप अकेली ही आ गई?
1: हाँ, जो साथ आ सकते थे वो बिछड़ गए हैं मुझसे।
0: खैर, आप पर्दा उठाकर यहां बैठ जाएं।
1: अब पर्दा उठा दूं? क्यों? अपनी इज्जत और आबरू बचाने की खातिर तो हम घर से बेघर हो गए हैं। तुम लोगों को देखकर मैं समझ बैठी थी कि बियाबानों में बाहर आई है, लेकिन तुम भी।
0: प्लीज प्लीज, आप गुस्सा थूक दो प्लीज। हम लोग जिसका यहाँ इंतजार कर रहे थे वो गालिबन आप नहीं हैं।
1: मैं ही तो हूँ जो बच गई मर मर कर जिंदा रहने के खातिर।
0: मैडम मैडम मैं
1: मैडम माँ नहीं कह सकते।
0: माता जी, आप मेरी बात आराम से सुन लें प्लीज। देखिए, हम यहाँ जिस फीमेल सामाजिक कारकुन का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, हम समझ बैठे आप वही हैं, यकीन कीजिए प्लीज।
1: क्यों क्यों हमारे हाले बद की तस्वीरें खींचकर उन्हें पेंटिंग्स बनाकर उनको बाजार में सजाने की खातिर? हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल?
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। देखिए, हम चाहते हैं कि दुनिया वाले आप लोगों की हालत से बाखबर रहें। लगता है कि आप भी जुल्म और सितम का शिकार हुई हैं, है ना?
1: हाँ, और नहीं तो क्या। सहर से शाम तक और फिर शाम से सहर तक शायद ही कोई लम्हा ऐसा है जब हमें कभी कहर आदम या कहर खुदा से पैदा हो रहे हैं अजाब अजाब शदीद अजाब के एहसासात का सामना न करना पड़ता हो।
0: माँ, मैं आपके दुख में शरीक होना चाहता हूँ, सच मानिए।
1: बेटे, ये माँ बेटे को सुख में शरीक करना चाहती है, दुख में नहीं। यस यस माय सन, आई ट्रस्ट यू। तुम सर्दी से ठिठुर रहे हो? चलो चलो, मैं तुमको तुम सबको कश्मीरी कहवा पिला दूं, फिर बातें करेंगे। देखो, यहाँ पास ही मेरा घर है।
0: अच्छा अच्छा,
1: घर क्या, एक छत है जो चार कच्ची दीवारों पर खड़ा है।
0: देखिए, पहले हम आपको चाय पिलाएंगे, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए प्लीज।
1: Why? Why the formula? माँ बेटे के हुलूस में अपनायत की आँच, सुहानी आँच को महसूस कर चुकी हूँ मैं।
0: देखिए, और मुझे आपकी बातों में बल्कि गुस्से में भी दर्द की चीख सुनाई दी थी, और अब एक माँ को अपने सामने देखकर सुकून महसूस कर रहा हूँ।

0: हैं जो माँ को बेटे से जुदा कर गए, और अब तुम हो जो गैर होकर भी मुझे बेटे के सामने बेटे का एहसास दिला रहे हो। शुक्रिया बेटा।
1: जी माता जी, मैं एक सवाल पूछ लूं?
0: पूछने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई हूं कि बेटा मां से क्या पूछना चाहता है।
1: जी।
0: मैं इस दूर दराज पहाड़ी इलाकों में 8-8 फुट बर्फ पर धस धस कर चलकर क्या ढूंढ रही हूं? बेटे हम लोग यहाँ भाग कर अपने घर खुले छोड़कर यहाँ गांव में पनाह लेने आए थे।
1: तो क्या आप भी मुसलमान होकर? गालिबन मेरा अंदाजा सही है ना?
0: हाँ, मैं मुसलमान हूं मगर सितमजद हूं, क्योंकि सितमगर महजिद नहीं होता, इसलिए मजहब के नाम पर मसीहाई का दावा करने वाले अपने मकसद और मतलब को मजहबी रंग देते हैं। बेटे
1: गोया आप भी अपने हम वतन हिंदुओं की तरह हिजरत कर गए हैं।
0: वो अच्छे रहे जो दूर दूर रहकर भी अपने घरों में लौटने की हसीन ख्वाब देखते रहते हैं। हम आस पास रहकर अपनों से बहुत दूर हो चुके हैं।
1: उनके बेटों को गोलियां मार मार कर खौफ ज्यादा करके भगाया था।
0: मेरे बेटों को दहशतगर्द बरगला कर ले गए थे, और वो सरहद पार करते वक्त फौज के गोलियों का शिकार हो गया। मेरी बेटी अपनी आबरू बचाते हुए जान गंवा बैठी। मेरे शौहर का कसूर ये था कि उन्होंने एक फौजी का ऑपरेशन किया था। वो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर रहमान भट्ट मरहूम। उसी रात उनकी कार रोक कर उन पर गोलियों की बौछार हुई थी। ये जुर्म सजा पाए थे मरहूम। मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए गनमैन अपने साथ ले जाने पड़ते थे। मैं एक प्रोफेसर थी ना, प्रोफेसर जाहिदा भट्ट, जिसको सरकार ने इंसान दोस्त डॉक्टर मरहूम डॉक्टर भट्ट की बेवा होने की वजह से जजा दी। तो दहशत गर्दों ने उसको एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर
1: ये तशद्दुद की इंतहा हो गई।
0: और आप हिजरत करने वालों का बार बार जिक्र भी करते रहते हैं, बल्कि फिक्र भी। कश्मीर में रहने वाले शिकारे या हाउस बोट वालों के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन हम जैसे बदबख्तों के बारे में कोई जानता भी नहीं।
1: देखिए मनु, बर्फ के तोड़ों के नीचे अगर सारा गांव दब गया था तो आप लोगों को कैसे बचाया गया?
0: फिर एक बार मिलिट्री ने कारी मसीहाई करके साबित कर दिया कि वो हर आफत का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने जाबाजी का काम करके 8-8 फुट बर्फ काट कर हमें मौत के मुंह से निकाल दिया।
2: जयदेव की फिल्म देखकर सभी जान जाएंगे अंकल। हाँ, प्रोफेसर जाहिदा के अंजाम पे रोना आया, गोया आंधियों से गुलशन उजड़ गया और सैलाबों से बीच तक उखड़ गया।
3: ये लग रहा है जैसे मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला। कुछ खूने जिगर से लिखा हुआ, कुछ आंसुओं से मिटा हुआ।
2: और सबसे चौंका देने वाली बात यह है अंकल, कि जब बातों बातों में प्रोफेसर जाहिदा से 1 करोड़ की बात की, तब उसने वो रकम उन फौजियों की बेवाओं को देने की दिली ख्वाहिश का इजहार किया जिनको दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया है।
3: वाह।
2: खैर, अगला सेगमेंट भी बहुत इंप्रेसिव है अंकल, और बहुत कुछ कन्वे कर रहा है। इस सेगमेंट की शुरुआत एक एग्जामिनेशन सेंटर के इर्द गिर्द छाए माहौल से हो रही है। वासु इस हिस्से का मरकजी किरदार एक नौजवान लड़का है। वो कई लड़कों को उनके मुश्किल सवालात के हल बता चुका है। फिर जब तमाम उम्मीदवार हॉल में दाखिल हो जाते हैं, वो तन्हा है और फटी फटी आंख

0: से हॉल को देख रहा है।
1: ये जो लड़के आपके आसपास आते जाते रहे, क्या आपके दोस्त हैं?
0: हाँ, कुछ अजनबी भी थे।
1: आपसे क्या पूछ रहे थे?
0: टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस के टिप्स और उन सवालों के हल या जवाबात जो उनको नहीं आते थे।
1: आपको आते थे?
0: हाँ, और वासु करे तो क्या करे। सारा कॉलेज जानता है सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ ना। मुझे शाइनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है।
1: That's very good, very good. ये टेस्ट किसके लिए जा रही है?
0: MBBS के दाखिले की खातिर।
1: आपका एडमिशन हो चुका?
0: नहीं, और कभी होगा भी नहीं।
1: क्यों? आप तो शाइनिंग स्टार हैं।
0: उससे क्या होता है, अब वासु करे तो क्या करे। मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला मिलता है जो रिजर्वेशन के दायरे में आता हो, जो सिफारिश के पर लगा के उड़ सकता हो या फिर डोनेशन दे सकता हो। मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं।
1: वासु, ये क्या शाइनिंग स्टार होते हैं क्या? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं तो आप क्या करेंगे?
0: 20 लाख अपने MBBS के एडमिशन के लिए, 10 लाख अपने MD के दाखिले के लिए, बाकी रकम अपने पिताजी को दूंगा ताकि वो मेरे 2 छोटे भाइयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके।
1: अच्छा।
0: खूब खिला पिला सके और अच्छे कपड़े पहना सके, मेरी बहन की धूमधाम से शादी करवा सके और अपने लिए गर्म कपड़े ला सके और फौरी तौर पर एक नया जूता खरीद सके। उनके जूते उनके पैरों को बिच्छू की तरह डंक मारते रहते हैं।
2: वाह, समंदर को पूजा में बंद कर दिया जय।
0: वन सेकेंड इज विजुअल पंच अंकल। आखिर में वासु की अश्कबार आंखों पर आसमान में तैर रहे काले बादलों का एक इफेक्टिव शॉट गरज की गूंज ओवरलैप कर दिया है।
2: अपने जय की फिल्म की गूंज दूर रहकर भी पास पास सांस पास सुनाई दे रही।
0: गोया आपको भी जयदेव की फिल्म अच्छी लगी।
2: और नहीं तो क्या। आखिर नटराज के शागिर्द की तकलीफ है।

सामिन भी आप सुन रहे थे जनाब वीरेंद्र पटवारी का तहरीर का ड्रामा ग्रहण, पेशकश मोतीलाल काचरू की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे श्याम अरोड़ा, जयश्री अरोड़ा, नीरज शर्मा, हर्ष बाला, कीमती आनंद, चांद नारायण सक्सेना और रश्मि नागपाल। माविन थी रिहाना बेगम। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश कश्मीर की कली फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार एस एच बिहारी, मौसीकार ओपी नैयर।

और सामिली जब सुनी अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो और साथियों को, फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके, नगमा निगार समीर, मौसीकार अनु मलिक।

हम हैं राही प्यार के, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में नगमा निगार थे समीर, मौसीकार नदीम शरवान। और सामिन ने जब सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जौहर इन कश्मीर फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया कल्याण जी आनंद जी ने।

दीवान के हम हाथ।

सच्चा झूठा फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में आक्रमण फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्याले।

सफर है सुहाना।

0: सभी सर्वे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 बरस के दौरान गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुई। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वेडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 बरस में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमात तक रसाई के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI निज़ाम में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़राअत और फलाही खिदमात तक रसाई को वसअत दी है। भारत तेज़ी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिले तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निज़ाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खिदमात की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसा इंटरफेस UPI अब 8 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। इसी तरह आधार, डिजी लॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने हुक्मरानी के निज़ाम को नई शक्ल दी है, शहरियों को बाख्तियार बनाया है और हमजहत तरक्की को तेज़ किया है। मुहिम के 11 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल अदायगी और फवायद की बराह रास्त मुंतकली के जरिए मुस्तफिदीन तक शफाफ अंदाज में सरकारी स्कीमों के फायदे पहुंच रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी आवाम की जिंदगी को आसान बनाने का एक मौसर जरिया बन चुकी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। वजारत खजाना के मुताबिक वो इस दौरे के दौरान आला सतह की दो तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगी, जिनका मकसद भारत फ्रांस कलीदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना, इकतसादी तआवुन को फ़रोग देना, सरमाकारी में इजाफा करना, नीस टेक्नोलॉजी और अख्तरा के शोबों में तआवुन को बढ़ाना है। मोहतरमा सीतारमन फ्रांस के अपने हम मनसब के साथ भारत फ्रांस इकतसादी और मालियाती मुजाकरात की मुश्तरक तौर पर सदारत भी करेंगी। ये मुजाकरात एक्स इन प्रोविंस में मुनक्किद होंगे। वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजलास में दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल करेंगे और भारत फ्रांस इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इकदामात पर गौर खोज करेंगे। दौरे के दौरान मोहतरमा सीतारमन चुनिंदा ग्लोबल CEOs के साथ बिलमुशाफा मीटिंगें करेंगी और सरकर्दा कारोबारी एग्जीक्यूटिव्स के साथ गोलमेज बातचीत में शिरकत करेंगी। इन मीटिंगों का मकसद भारत के मजबूत इकतसादी बुनियादों, जारी ढांचा जाती असलाहत, सरमाकारी के मौाक़े और तवील मुद्दती तरक्की के इम्कान को उजागर करना है। जून के महीने में अदायगियों के UPI निज़ाम के तहत लेन देन में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 23% का इजाफा हुआ और ये 2 अरब 20 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि UPI लेन देन की मालियत 20% बढ़कर पिछले महीने 28 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। अदायगियों से मुतालिक भारत की कौमी कॉरपोरेशन की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक औसत बुनियाद पर जून के महीने में UPI के तहत रोज़ाना तकरीबन 75 करोड़ 70 लाख के लेन देन हुए। 8 से ज़्यादा मुल्कों में UPI का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशियस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर फिनटेक के शोबे में भारत की मौजूदगी को तकवीत मिली है। अशिया और खिदमात टैक्स GST की वसूलियाबी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपए हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रुपए से साल ब साल 13.9% का इजाफा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरतहाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी की जरूरत पर जोर दिया है। फौजी अमले के 31वें सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में बाख्तियार हो और हर सूरत हाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो। उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में मुसलसल चौकसी बरकरार रखेगी और कौमी सलामती को लायक किसी भी चैलेंज से मौसर तौर पर निपटने के लिए कार्रवाई की आला सतही तैयारी रखेगी। जनरल सेठ ने कहा कि उनकी तवज्जो नजरियाती और तकनीकी दोनों हल पर मरकूज रहेगी। पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 के तहत नए पासपोर्ट की दरख्वास्त की फीस में आज से इजाफा कर दिया गया है। फीस के नजरसानीशुदा निज़ाम के तहत 36 सफहात के नए पासपोर्ट या पासपोर्ट दोबारा हासिल करने के लिए अब 2,500 रुपये देने होंगे। 60 सफहात के नए आम पासपोर्ट या उसे दोबारा हासिल करने के लिए 3,500 रुपये मुकर्रर किए गए हैं जबकि तत्काल स्कीम के तहत 6,000 रुपये देने होंगे। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने आज दावा किया है कि उसकी अफवाज ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। एक बयान में वजारत दिफा ने कहा है कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वाकई ISIS के मराकज पर किए गए। इन हमलों से ISIS और उसके हामियों को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा है कि ये हमले इंतहाई दुरुस्त निशाने के साथ किए गए और इन हमलों में किसी आम शहरी की हलाकत नहीं हुई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पक्तिया और कुनार में किए गए फिजाई हमलों के बाद किए गए जिनमें खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरी हलाक और 163 जख्मी हो गए थे। इन हमलों के बाद अक़वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तक़िल मिशन ने अक़वामे मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की अपील की है। इन फिजाई हमलों पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए तमाम फरीकों से शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की अपील की है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। फीफा आलमी कप में आज सुबह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको ने नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 बरस के दौरान गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं और फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1000 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित है आपका अपना साथी करण वर्मा। श्रोताओं नमस्कार। आज बुधवार है जिसका इंतजार

यार हम सभी को बेसब्री से रहता है, क्योंकि हर बुधवार हम युववाणी कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें हम आपके पत्र पढ़ते हैं और आपकी पसंद के गीत भी आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज के युववाणी कार्यक्रम में आपकी पसंद के साथ साथ हम बात करेंगे रेडियो के महत्व की और साथ ही बात करेंगे आज के इतिहास की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दो रास्ते फिल्म के इस गीत के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान ने। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका ने। गांव हीरावाली पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनी राम और रणजीत राम किरोड़ीवाल ने। गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया ने। पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा ने। गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने। उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयान बाबू ने। हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा ने। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, रेडियो विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है। ये एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके द्वारा हम घर बैठे समाचार, संगीत, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो का आविष्कार वास्तव में हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। रेडियो का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये जानकारी को बहुत जल्दी और दूर दूर तक पहुंचाता है। इसके माध्यम से हमें देश दुनिया की खबरें, मौसम की जानकारी और महत्वपूर्ण घोषणाएं मिलती हैं। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेडियो आज तक एक उपयोगी माध्यम बना हुआ है, क्योंकि इसे चलाना आसान है और इसकी पहुंच अधिक है। रेडियो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सहायक है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक चर्चाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री प्रसारित की जाती है। किसान भी रेडियो के माध्यम से खेती से जुड़ी हुई नई तकनीकों और मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि रेडियो वास्तव में समाज के लिए एक उपयोगी और प्रभावशाली संचार माध्यम है। ये ज्ञान, सूचना और मनोरंजन प्रदान करके हमारे जीवन को सरल बनाता है। तो मित्रों, बातें और भी करेंगे। लीजिए, पहले सुनिए ये गीत फिल्म त्रिशूल से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो ने। झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार और भानु प्रताप सिंह पंवार ने। झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। गांव कलाना हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किरसन मायल, केडूराम जोईया, हनुमान

भरण और सुनील पाईवाल शर्मा ने, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार कुमकुम ने, आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर ने, जाखोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, गांव 4 AM से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत और जसदीप ने। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, अगला पत्र हमें लिखा है एलनाबाद से आत्माराम गोदारा और आरुषि गोदारा ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा ने। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु और दोहिती इवा धारणिया ने। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम और सरिता गौतम ने। जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। लोहेगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ने। नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार और कालू मिस्त्री ने। बठिंडा रोड मंडी डबावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। बुलढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे ने। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा ने। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म कुदरत से।

दोस्तों, अगला पत्र हमें भेजा है असम से हितेंद्र दास ने, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, कुमारी प्रियाली हागोड़े और पार्थ हागोड़े ने, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक और मधु नायक ने, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड ने, हयात कलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण ने, लालगढ़ जाटान जिला श्रीगंगानगर से श्री रामेश्वर जी निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और श्री ब्रिजलाल जी निरानिया ने, बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अबासी, निघत परवीन, शाह नवाज अबासी, सरफराज अबासी, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अबासी ने, अली का तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी ने, सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोंढे, आम्रपाली लोंढे और आरव ने, करणवीर हाउस बुच्चो कैंजिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत ने, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर ने, लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म प्यासा सावन से।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अगला पत्र हमें भेजा है हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहाने, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सोम्या सिंह और अविरल।

0: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, अगला पत्र हमें भेजा है हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां ने, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह ने, तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, उपेश कुमार, ममता, मीतू, कीनू और अक्ष क्यू ने, बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर ने, अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, पर्ण्य प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे ने, सांगली जिले के जज शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह सबाहत और कीरत हुजरे ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार ने, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर ने, ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी ने। लीजिए अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म अजूबा से।

दोस्तों, अगली फरमाइश हमें भेजी है गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ़, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी ने। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया ने। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी और प्रमोद कुमार डूडी ने। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बैन और राजेंद्र जी शाह ने। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहरण, मोनिका और मनीष सहरण ने। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार गोडके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यगेश गोडके ने। गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया ने। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक और भूपेंद्र पारिक ने। जलंधर सिटी पंजाब से सोनू, रविराज और गुलशन लक्की ने। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा,

बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पी बी कुलथे ने। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म मंजिल से।

दोस्तों, अगला पत्र हमें लिखा है शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया रीत और ऋषभ राजावत ने। गांव ढाणी से लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो और विनोद खां ने। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा ने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा ने। रायसिया नगर से सोहन लाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, सुनील, संजय और शो प्रकाश ने। शमसूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी ने गंज डुंडवारा से। केसरी सिंहपुर से श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार और चिमन लाल ने। जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी ने।

दोस्तों, अगला पत्र हमें भेजा है गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सदाम और अदीब ने। गांव कल्याण मलक्का, जिला बठिंडा से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर और मनिंदर ने। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीस खत्री, नूरू मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना ने। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और प्रहलाद राजेंद्र वर्मा ने। मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग ने। गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने। छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया ने और पोता मास्टर अल कबीर ने। कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म विश्वात्मा से।

दोस्तों, यदि आप भी हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है आपकी पसंद युववाणी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कोटन सिटी सूरतगढ़, पिन कोड 335804। आप सभी के पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। तो मित्रों, इसी बातचीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद 6:05 पर आप सुनेंगे सैराइकी। शाम के 7 बजे कार्यक्रम होगा चौपाल, इसमें आज आप पत्रोत्तर सुनेंगे। 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। रात के 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, चर्चा का विषय, यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात के 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हेलो वन भवन, कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया और प्रस्तोता हैं रोहिता शर्मा।

0: निजीब सुनिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कल सुबह 6:10 पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम होगा वंदना। चिंतन का समय रहेगा सुबह 6:45 पर। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम होगा खेतिहर वास्ते। इसमें जानकारी का विषय रहेगा माटी जांच के नमूने कैसे लें। मानस गान का सेस्वर पाठ आप सुनेंगे कल सुबह 7:20 पर। 7:30 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे क्षमा का महत्व, नशा जीवन का नाश और योग व स्वास्थ्य। कल सुबह 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:10 पर कार्यक्रम होगा मरुमंगल। इसमें कलाकार होंगे श्रवण जोड़ा। फिल्म संगीत यह कार्यक्रम होगा कल सुबह 9:30 पर। फरमाइशी प्रोग्राम अनुरोध गीत आप सुनेंगे कल सुबह 10:00। कल दिन में 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। कल दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत खेत खलिहान। यह कार्यक्रम होगा कल दिन में 12:50 पर। इसमें जानकारी का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। कल दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे नन्हे मुन्ने और स्कूल की तैयारी, हमारा सबसे अच्छा मित्र वृक्ष, कुछ बातें भूलना ही अच्छा और सेहत से भरपूर बैंगन विषय पर। कल दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या 5:00 कार्यक्रम होगा युववाणी और शाम के 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बूंद बूंद फव्वारा विधि से सिंचाई, पशुओं के आहार में सूक्ष्म पोषक तत्व, प्राकृतिक खेती के लाभ। कल रात्रि 10:00 आप सुनेंगे विज्ञान पत्रिका जिसे हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कल रात के 10:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से ओवल स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा। कल रात के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और रात्रि 11:10 पर ओवल स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण खेल की समाप्ति तक हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब सुनिए सराई की
1: रेडियो ता सराई की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे किते सराई की प्रोग्राम घेन के हाजर हां। ते साडा आज दा सराई की प्रोग्राम

मन्नीवा मातुची ते वर्ताव सच्चा सुच्चा है। इन्हा उदासियां दौरान गुरु साहब जगन्नाथ दे प्रसिद्ध मंदिर विच भी आवंजे, जिथे उन्होंने आरती उचारी, गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। वल गुरु साहब उत्तरी भारत विच वेंदे हिन, जिथे उन्हा जोगियां नाल विचारा कीतियां हई ते ए विचारा कविता रूप विच सिद्ध गोसड़ दे नाम नाल जानदे हिन। इस थान दा नाम नानक मता है। गुरु साहिब ने बहु लंबियां यात्रावां कीतियां। ओ कैलाश ते सुमेर पर्वत ते मानसरोवर झील उत्ते भी पहुंचे। नेपाल, तिब्बत, मक्का मदीना ते वला बहु थावां उत्ते जाके एकता अते भाईचारे दे उपदेश दित्ते।

जपजी साहिब आसा दीवार सिद्ध गोसट उन्हां दियां विद्वता भरपूर रचनावां हिन। गुरु नानक देव जी दा एहो सिद्धांत है परमात्मा एक है, सच दी पंध उत्ते टुरना चाहिदा है। काम कावड़ लालच मोह गुमान इंसान दे दुश्मन हिन, इन्हां को त्याग के चंगे काम करें दे रहो, नहीं तां गुरु जी दा आखना है आपे बीज आपे ही खाह। सेवा उत्ते गुरु साहिब ने बहु जोर देता है, नाल ही आखा है मन जीते जग जीत, यानी हां को जीतो तां तुसा सारा जग जित घिनसो। वल गुरु साहिब दी बाणी आधी है विद्या विचारी ता परोपकारी। अगू गुरु साहब ने त्रिमत कुमान देन किते आधा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। वाकई गुरु नानक देव जी सारा के साचे हन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैरा की। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा और राज्य में मानसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बनी है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डीबीटी से हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। राजस्थान में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम

0: बनाया जा रहा है।
1: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें STT, GDC, HG एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश की IT और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने

0: स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें एसटीटी, जीडीसी, एचजी एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश के आईटी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीकी नवाचारों से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की बात सार्थक हो रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है, और इसीलिए जो जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा गया, उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था, आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं, उसे हम राजस्थान में करें, या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
1: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में कल विभिन्न प्लेनरी और ब्रेकआउट सत्र होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ समाप्त

0: सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। श्री मोदी बालोतरा के पचपदरा स्थित देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दौरे को यादगार बनाने और हरित विकास की अलख जगाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है।
2: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज लोक मंथन 2026 के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत कर रहे हैं। हम भारत के लोक थीम पर इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय चिंतन। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर

0: गठित समिति ने गृहमंत्री को बताया कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। साथ ही इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय होगा और विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। समिति ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली तैयार की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज खिलौना बैंक शुरू किए गए। साथ ही इन केंद्रों पर प्रवेशोत्सव और पौधरोपण के कार्यक्रम भी रखे गए। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने जयपुर के गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को प्रवेश किट भी वितरित किए। उधर नंद घर योजना के तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली के महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार ने बताया कि जिले के 222 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में बदलने का काम पूरा हो चुका है।
1: जिले में 222 नंदघरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है, जिसमें और केंद्रों को भी नंदघर में चयनित किया जा सकेगा।
0: जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता हुई। इसमें यूनियन की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। विभाग के सचिव रवि जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से कुछ मांगों पर सहमति के बावजूद सफाई संगठन अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में परंपरागत रूप से साफ सफाई का काम कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी, और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
0: सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जल्दी ही हड़ताल समाप्त करने के बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अगले 2 दिनों में मॉनसून के आगमन की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बरसात शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मॉनसून की दस्तक करीब 8 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस बार जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मॉनसून के प्रवेश से पहले प्री मॉनसून गतिविधियां कुछ भागों में सक्रिय है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात हुई। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चली। भरतपुर में सुबह पानी बरसने के बाद दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चला। राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर आज छितराई हुई बारिश हुई। आज 24 जिलों में आंधी और बरसात की चेतावनी है। कल से 4 जुलाई के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार हवाएं और धूल भरी आंधी का अलर्ट बताया गया है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर हिस्सों में दिन भर तेज धूप और उमस का असर रहा। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया।
3: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा और राज्य में मानसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले दिन जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बिजली, पानी, सड़क, पट्टा वितरण, नाम परिवर्तन, आबादी, भूमि से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान सहित प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और आम जन की समस्याएं सुन रहे हैं। गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डैयाणा में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी के महत्व और विकास योजनाओं के निर्माण में आंकड़ों की भूमिका पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे और अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जाँच की गई। प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गईं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के किसानों को 23वीं किस्त जारी की गई। कृषि विज्ञान केंद्र फलोज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1,53,000 से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि जमा की गई। खातों में राशि पहुंचने पर किसानों ने खुशी व्यक्त की। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को भूमि की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। आदिवासी अंचल की शिक्षा की प्रतीक शहीद वीर बाला कालीबाई का शहादत दिवस जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उनकी जन्मस्थली रास्तापाल सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और बलिदान को याद किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी जिले भर में मनाई गई। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप के त्याग, साहस और स्वाभिमान को याद किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय समारोह डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में पिछले दिनों प्री मॉनसून की अच्छी बारिश हुई। बारिश से तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि उमस का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। किसान खरीफ

0: फसलों की तैयारी में जुटने लगे हैं और अच्छी मानसूनी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारा ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलाव रा बारा माय बनाई जी आला दर्जारी समिति सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो और राज्य में चौमासारी बिरखा बेगी सरूहे वन रा आसार उगनी हल्काऊं बिरखा सरूहे वन री संभावना। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव रो मजबूत जरियो बनी है और तकनीक काम लेर सरकारी योजनावां में दलालान रो दखल खत्म भयो है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा उद्घाटन समारोह में बोल रहा है। वे कहो कि डीबीटी उन हर योजना रो फायदो सीधो पात्र लोगों रा खाता में पोग रियो है।
2: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
1: मुख्यमंत्री ई मौके स्मार्ट परियोजना ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज री शुरुआत कीनी। इनु पहली वह तकनीकी सेवाओं रा बारा माय लगाई जी प्रदर्शनी रो उद्घाटन कीनो और वन निरखी। ई पाछे श्री शर्मा उद्योगों रा नुमाइंदा सागे बातचीत कीनी। इस दौरान वे बतायो कि राज्य ने डेटा सेंटर हलका माए 43,000 करोड़ रुपये बत्ती रकम रा निवेश प्रस्ताव मिलिया है। आम आए STT, GDC, HG एकाया और नायो बोल्ट समेत कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश रा IT और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ही कार्यक्रम माए वारा विचार बताया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थकान राठौड़ कहो कि तकनीकी नवाचाराओं न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन री बात सांची वे रही है।
3: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज UPI जो पहले मजाक बनाया जाता था आज UPI गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
1: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकार का न्यू मिलर कराया जा रहा 2 दिन रा इन सम्मेलन रो मुद्दों विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस राखी चियो है। सम्मेलन में काल न्यारा न्यारा प्लेनरी और ब्रेकआउट सेशन रखा जावेला। ई पाछे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देवेला। केंद्रीय कैबिनेट राजधानी दिल्ली सारू खास परियोजना ने मंजूरी दीनी है। मीटिंग में करीजिया फैसला री जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग ने मंजूरी दी जी है। इनू आतुणी और लंकाऊ दिल्ली बीच जुड़ाव बेहतर वेला। ई काम माथे 6,970 करोड़ रुपये बत्ता खर्च करया जा वेला।
4: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने

0: लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा न ध्यान रखता थका तैयारियां जोर शोर चल रही है। श्री मोदी रो बालोतरा रा पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो ही उद्घाटन करेला। माणा बालोतरा खबर नवीस बतायो कि प्रधानमंत्री रा दौरा ने यादगार बनावण और हरित विकास री अलख जगावण सारू मोटा पैमाना माथे पौधा रोप्या जा रहा है।
2: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इंसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृहमंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा सदस्यां सागेफी मीटिंग माय हुकम तीनों। समिति गृहमंत्री ने बतायो कि राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रो दौरो कर और ई बारा माय जानकारी हासिल करी जावेला। समिति जानकारी हासिल करण सारू प्रश्नावली बनाई है। ध्यानयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लारला साल आला दर्जा रा जनसांख्यिकी मिशन रो ऐलान की न हो चिंपाछे रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर री सदारत माए आ समिति बनाई ची ही। प्रदेश रा सगला आंगनवाड़ी केंद्र माए आज खिलौना बैंक शुरू करी चिया। इंसा गई प्रवेशोत्सव और पौधारोपण रा कार्यक्रम ही राखी चिया। महिला और बाल विकास विभाग री शासन सचिव पूनम जयपुर रा गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक री शुरुआत कीनी। ई मौके बच्चा ने प्रवेश किट ई दिया चिया। नंद घर योजना रा तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रा ने और बेहतर बनाया जा रहा है। पालीरा महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पंवार बतायो कि जिला रा 222 आंगनबाड़ी केंद्रा ने नंद घर माए बदलीकरण रो काम पूरो वेक्यो है।
3: जिले में 222 मंदिरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदगढ़ में चयनित किया जा सकेगा।
1: स्वायत्त शासन विभाग रा सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन रा नुमाइंदा बीच आज जयपुर माए बातचीत हुई। इन दौरान यूनियन री कुछ मांगा माथा एक राय बनी। विभाग रा सचिव रवि जैन खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका बतायो कि सरकार री ओर कुछ मांगा मान लिया पाछे सफाई कर्मचारियां रा संगठन दूजी मांगा न लेर अड़ रहा है। वह कहो कि सफाई कर्मचारियां री भर्ती माए मूल रूप साफ सफाई रो काम कर रहा लोगा ने प्राथमिकता दी जावेला।
4: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी, और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
1: सफाई कर्मचारी यूनियन रा अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया बातचीत ने सकारात्मक बताता था का कहो कि सफाई कर्मचारियां री हड़ताल बेगी खत्म करन रे बारा माए फैसलो लियो जावेला। अरब मौसम राज्य माए आवता 2 दिन माए चौमासा री बिरखा स्वरूफे वन रा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए

0: भारी बारिश री संभावना है जदके 6 जुलाई ताई प्रदेश रा घणखर हल्का माय में सरूफे वण री संभावना है। इन साल चौमासा री बिरखा लारला साल री तुलना माय करीब 8 दिन मोड़ी सरूफे वण रा आसार है। मौसम विभाग जुलाई महीना माय प्रदेश माय सामान्य कम बारिश वे वण रो अंदाजो लगायो है। इन बीच राज्य रा कुछ हल्का माय चौमासाओं पहली री हलचल चाल रही है। लाडला 24 घंटा माय कोटा उदयपुर और भरतपुर संभाग माय थोड़ी घनी बिरखा भी। जैसलमेर माय आज आंधी चाली। भरतपुर माय संवारे भी बिरखा पाछे दिन भर सिलो बायरो बाजो। राजधानी जयपुर माय कठे कठे बारिश हुई। मौसम विभाग आज प्रदेश रा 24 जिला माय आंधी बारिश सारू चेतायो है। काल 4 जुलाई बीच बीकानेर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ माय जोरदार बायरो बाजण और आंधी चालन सारू चेताइचियो है। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा पहले वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर बी सी राय री याद माय ओ दिन मनायो जावे है। इन दिन इलाज रा हल्का माय डॉक्टर रा समर्पण सेवा भावना और इंसानियत रा प्रति योगदान रो मान करियो जावे है। जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति इलाज रा पेशा न सेवा सागे खुद न संतुष्टि देवन वालो बतायो।
1: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हों, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार न बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावां बारा माय बनाई जी आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवण सारू कहो। और राज्य माय चौमासारी बिरखा बेगी सरूफे वण रा आसार। उगणी हल्काऊं बिरखा सरूफे वण री संभावना। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल में पत्रोत्तर।

0: राम राम दुर्गा राम भाई, राम राम।
1: राम राम मुकेश भाई, राम राम सारा सुनिया ने भी राम राम।
0: घना न घना राम राम। और दुर्गा राम भाई सुनाओ के हाल है?
1: बस बहुत बढ़िया यार, आज तो दिन में तावड़ो तो कोजो थपो।
0: पूछो ही ना दुर्गा राम भाई, आजकल के है कि अब वो मौसम है जो बदलन ला रही हो, और ये मौसम का मैं कई जगह तो तावड़ियो तपर, कई जगह में बिरखा होने लग रही
1: है। सही हाँ।
0: और इनकी वजह के है कि अब आपने जी हम मौसम बदले तो बिंगे सागे सागे हरी बीमारी है, बा भी अब स्वास्थ्य संबंधी अपन ध्यान रखना चाहिए। सर्दी जुकाम है, मौसम बदले तो ठंडा ताता को भी ध्यान रखना चाहिए। बिंगे अलावा अब मच्छर भी बहुत हो गया।
1: हाँ मच्छर भी बहुत हो गया यार। टबरिया देखा ना, अपना फ्रिज को ठंडो पानी पी लियो, या को कई बार अपना देखा गले में कुल्फी बेचने वाला आवे नहीं, तो वो कुल्फी भी खा गए बेखावत भी हूँ, बगो जुकाम भी हो जाए यार, बहुत
0: हो जाए।
1: सारी भीतर
0: बिल्कुल
1: बीमारियाँ
0: बिल्कुल।
1: हो
0: अब के है कि कई जगह मैं भी रखा हुआ तो बिंग वजह के वो मौसम थोड़ा सा उमस आड़ो सो गयो, तो यूँ के पसीनो आवे, और पसीने का माँ आप ठंडो पानी पी लें या थेको जो टाबरिया कुल्फी खा लें,
1: हाँ
0: तो भी फिर देखो जुकाम सर्दी है तो होनी है।
1: सही
0: तो
1: है
0: यहीं
1: सही है
0: वास्ते सावचेती रखो, ध्यान रखो टाबरियां को भी और बड़े बुजुर्गों को भी।
1: जी, जरूर जरूर। हर टाइम टाइम पर अपने इन तरह की कोई हारी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर ने दिखाना भी
0: डॉक्टर ने
1: जरूरी है।
0: दिखाओ राय लेनता रहो।

0: जो भी है, चाहे हरी बीमारी पशुओं में भी है, तो
1: हाँ
0: मन है भी डॉक्टर कनु जांच करवाता रहो।
1: सही है सर, सही है,
0: तो दुर्गाराम भाई आज पत्रोत्तर को दिन है,
1: जरूर
0: और अपना श्रोता है जका आज उड़ीक रखे है कि बांगी प्रतिक्रिया है जकी आप आई मैं बचांगा।
1: जी,
0: तो शुरू में आप पेल पोत माने पे भजन सुना दिया, बिंगा
1: जरूर।
0: बाद बांगा खत है, मेल है और संदेश आयडा है जका
1: हाँ
0: व्हाट्सएप ग्रुप में,
1: हाँ
0: बे
1: बेबी, आप
0: बचांगा
1: बेबी बांचांगा, पहले चलो भजन सुनाओ।
0: भजन सुना आप।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: संदेश पहला सुनियो दुर्गाराम भाई भजन
2: बहुत ही सुनो लाखड़ली थारी जिंदगी।
1: हाँ बिल्कुल,
2: मोइनु दीन को गाइडो ना,
1: मोइनु दीन को गाइडो भजन बहुत सुनो भजन। और पत्रोत्तर है तो आप शामिल कराम संदेश आयड़ा है जगह।
2: तो पहलो संदेश आपने ती पूग तो करे है मुकेश भाई। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा।
1: ठीक है
2: अनेजा साहब, बात लिखे है के चौपालगा के मैं नियमित श्रोता हाँ। अरे इन प्रोग्राम ने मैं कभी शिद्दत सुना।
1: वाह जी वाह।
2: अरे चौपालगा में की थे राजस्थानी गीतांग बातचीत करो, राजस्थानी जो प्रोग्राम है गीता रो गजरो कब्बो हमारे श्रोताओं की पहली पसंद बन गयो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अरे किसाना खातर जी थे बढ़िया बढ़िया जानकारी दियो, बेसारा किसाना का जी कारगर सिद्ध होने लग रही है।
1: देखो अनेजा जी, ये जानकारी देवा तो थारे वास्ते ही है और थे फायदा उठाओ इंग वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद।
2: हाँ आगे लिखे है कि चौपाल में जका सारा पेश करने वाला है नी।
1: हाँ जी
2: सारा का सारा बधाई का पात्र है क्योंकि नई नई जानकारी देवे किसान भाइयों ने।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपने जगह श्रोता है जबकि प्रतिक्रिया देवर बिंग हिसाब से ही आप जगह कार्यक्रम में भी मैं सुधार करा तो यूँ आपने भी अच्छा लगे और श्रोताओं ने भी अच्छा लगे।
2: सही है सही है। और किसानों तो बहुत ही अच्छा लगे,
1: बहुत ही अच्छा
2: जगह थे नई नई जानकारी दियो सारा ने।
1: बिल्कुल।
2: और आगलो संदेशो पूग तो करो अपने तई लिखियो है अपने तई हनुमानगढ़ टाउन से।
1: ठीक है।
2: रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम, इमरान खां और इरफान खां। अंग्रेजी मंडे आ।
1: हाँ देखो अंग्रेजी माने थोड़ी सी औखी पढ़नी आवे थे, हिंदी में लिख के भेजो तो सारो बढ़िया है।
2: लिखियो है कि प्रोग्राम पेश करता ने कमारा राम राम है। और चौपाल के मैं सुना माने बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही फुटर लगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रजाक मोहम्मद जी और सगले परिवार ने आने
2: जी आने धन्यवाद दे। हमारा अगलो मेल आपने ती पूग तो करे है जो को संदेश पूगो है वो लिखियो अपने गाँव अरायण से। बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया।
1: के लिखियो है यहाँ?
2: हाँ लिखियो है कि 25 जून ने महिला क्रिकेट जो चलन लाग रहे है, विश्व कप चलन लाग रहे है
1: जी,
2: के बिंगो जो थे लाइव प्रसारण सुनायो नहीं, बहुत ही अच्छा लगे
1: जी।
2: अन आप बता दे वहाँ कि आज भी दूसरो सेमीफाइनल है अपने।
1: बिल्कुल।
2: और आज नहीं कल दूसरो सेमीफाइनल है और वो रात ने आप प्रसारण भी करूंगा 10:30 पर।
1: तो ये सुनेगा अपने प्रतिक्रिया देवेगा?
2: जरूर देवेगा जरूर दे। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में है वो।
1: ठीक है ठीक है।
2: आगे लिखन लग रहा है बात के 26 जून ने गीता रो गजरो रमेश भाई प्रस्तुत करो का बहुत ही बढ़िया लगे, भजन भी बहुत बढ़िया लग गया।
1: रमेश भाई ताई थारी बात पुगन लाग रही है और बांगी तरफ शू भी थाने बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 27 जून ने श्रीपाल जी मोठ फसल बारे जिकी जानकारी दी, बहुत ही बढ़िया लगी
1: जी।
2: अरे कार्यक्रम मैंने बहुत ही अच्छा लगा है। अरे जिकी खेती बाड़ी की जिकी बात करो, तकनीक की बात करो, बेबी माने बहुत बढ़िया लगे कि विशेषज्ञ से कोई जानकारी मिलती रहे नी वह भी बढ़िया लगे।
1: नहीं नहीं आगे आप टाइम टाइम पर जानकारी दिलाता रहेगा, बस एक कार्यक्रम सुनता रहे और प्रतिक्रिया आपने देवता रहे।
2: अरे आगलो संदेश पूग तो है गाँव गवंडिया से। जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमना, सायना, विष्णु ढोकिया और ईवा धारणिया को।
1: ठीक है।
2: ये लिखे है कि पत्रोत्तर पेश करता भाई मुकेश ने राम राम।

0: घणी घणी राम राम।
1: ऐसे देखो लार लो प्रोग्राम शुक्रवार ने गीता नो गुजरो नी लोक भजन अर गीत माने बहुत ही दाय आया अर कह मारू मैसेज भी शामिल करियो रमेश भाई भी वास्ते बने धन्यवाद देवा।
0: थाने भी मोकलो सारो धन्यवाद कि थे माने प्रतिक्रिया मांड के भेजो, संदेश भेजो और इतने ही आगे भी माने भेजता रहो, ताकि मैं थारो मेल भी शामिल करा, खत भी शामिल करा और संदेश भी शामिल करा।
1: अर के वैसे नहीं बारना चौपाल गमा लोक गीत लोक भजन सुनाया अर किसी ऊंच की संबंधित जकी जानकारी दी नी बेमाने बहुत ही दाय आई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डुकिया जी, और मथे माने प्रतिक्रिया लिखता रहो।
1: आगलो संदेश आपने दी पुगतो करे है तहसील भादरा अनूप शहर सिंह गजानंद सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार साहिल राघव मुरारीलाल शर्मा मदन लाल शर्मा और फूसाराम मील जी।
0: के लिखा है
1: ये लिखे के चौपाल पेशकर्ता ने कमारा राम राम
0: राम राम सा, राम राम।
1: कथेज की माने खेती बाड़ी की जिकी नुई नुई जानकारी देव नी माने बहुत बढ़िया लगे है। अर कह नाटक एक जरूर सुनाओ यमगा यमराज को वरदान।
0: बिल्कुल, नाटक आने सुनवाता रेवा थे, सुनता रहो। और बृहस्पतिवार ने आपा नाटक सुनवाया करा, तो थे माने नाटक सुनो और सागे थे लिख के भी भेजो कि किसो नाटक सुनवाया, ताकि माने भी बेरो लागे कि थे कार्यक्रम लगातार सुनन लाग रहे हो।
1: जी मुकेश भाई आगलो आपने दी संदेश पूगत होयो है लिखण वाला है जगदीश चंद्र प्रजापत विमला मोनू राजेंद्र प्रजापति
0: ठीक है, अमरपुरा जालू खाट से।
1: हाँ अमरपला जालूखाट से हूँ के एक वह के 26 तारीख ने जो गीता रो गजरो रमेश भाई पेश करियो नी बहुत ही बढ़िया लाग्यो और नाटक सुनायो बहुत ही बढ़िया लाग्यो।
0: देखो हाँ श्रोता मांगी आपने ने प्रतिक्रिया अंति रेवे, और अठू आप आपा ने भी बेरो लागियो कि कार्यक्रम तो सुने
1: सुने सुने सुने
0: सुने बिल्कुल, और इतने ही प्रतिक्रिया लिखता रहो थे कार्यक्रम सुनो, इंग वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद।
1: और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान और पूजा परियार गो अपने संदेश पुग्यो है ये लिखा है कि मैं कार्यक्रम का नियमित श्रोता हाँ का बहुत ही बढ़िया लगा प्रोग्राम आने और कृषि जगत की जगह थे जानकारी दियो वाह माने बहुत बढ़िया लगा है और मौसम संबंधी और खेत खलिहान संबंधी खेता में जिसको टेमो टेम बुआई उन संबंधी जिसकी जानकारी दियो भाई माने बहुत ही दाया।
0: नहीं बिल्कुल, ये फायदा उठावे इन चीज़ को, देवा मोकलो सारो धन्यवाद, कार्यक्रम सुनता रहो और प्रतिक्रिया लिखता रहो।
1: और आगलो संदेश पूगतो है गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से बड़ी दूर हूँ अपनी संदेश पूगे
0: बिल्कुल, यूं बेरो लागे कि दूर दूर का श्रोता जुड़े रहे आपनों।
1: लिखने वाला है दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवाम वर्मा ये लिखा है कथारे केंद्रों जो का प्रसारित कार्यक्रम है भी माना बहुत बढ़िया लगा है और जबकि खेती बाड़ी की थे जानकारी दो वह भी बढ़िया लगा है।
0: देवा मोकलो सारो धन्यवाद, थे कार्यक्रम सुनता रहो।
1: और आगलो संदेश पूगतो हुए है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का को
0: के लिखा है
1: मिशन साहब बात लिखे है कि चौपाल पेश करने वाला ने मारी राम राम
0: राम राम सा।
1: लोक भजन लोक गीत बहुत ही अच्छा लगा है और शुक्रवार ने गीता रो गजरो जिको प्रोग्रामों भी मैं लोक गीत और लोक भजन सुनाया बेमाने बहुत ही पसंद आया।
0: बहुत बढ़िया मिशन साहब, थे सुनता रहो कार्यक्रम, थारी फरमाइश के हिसाब हुई मैं गीत भजन चलावा, माने भी बेरो है कि मारे श्रोता माने किसा गीत किसा भजन पसंद है, और माने टेमो टेम आपा कृषि संबंधित भी जानकारी देन तारे वहाँ, तो कार्यक्रम सुनता रहो, देवा थारो मोकलो सारो धन्यवाद।
1: आगलो जो को संदेश है वो पुग्यो है आसाम से
0: बहुत दूर छू आए वह।
1: हितेंद्र दास को
0: के लिखा है
1: ये भी अंग्रेजी में लिखा है कि वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम
0: थे तो अंग्रेजी पढ़ लियो दुर्गा राम जी।
1: माड़ी मोटी पढ़ना था बस इतनी इति की बात लिख रही भेजी हाँ
0: नहीं, बढ़िया है, लिख के भेजो है, लेकिन हिंदी में जे मांड के भेजो तो देखो मैं ज़्यादा तरीका छूँ और सही तरीका छूँ समझ पावांगा, बोल पावांगा,
1: हाँ जरूर भाई जी।
0: लेकिन फिर भी इन शू पतो चले कि ये कार्यक्रम सुने है, तो आंगो देवा मोकलो सारो धन्यवाद। तो दुर्गा राम भाई अब आप कई देर हो गिन संदेश बांसता ने, अब कोई गीत सुना दिया
1: सुनाओ सा सुनाओ
0: सुनो सर।

0: सुनियो दुर्गाराम भाई गीत।
1: हाँ सुनियो, बहुत ही बढ़िया गीत सुनाए थे सीमा मिश्रा की आवाज
0: सीमा
1: में।
0: मिश्रा की आवाज़ में, और उम्मीद करा श्रोताओं ने भी पसंद आई हो। सी
1: जरूर सा जरूर।
0: बिल्कुल। अब बांचो दान संदेश आपने जो ऐड है।
1: हाँ, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आपने ती वो संदेश पूग तो करियो है। लिखना है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक।

0: जी
1: एक लारला थेज का प्रोग्राम सुनाया चौपाल गमा, माने बहुत ही दाय आया, बहुत ही पसंद आया।
0: जी, ये रेडियो सुने देवा आंगो मोकलो सारो धन्यवाद।
1: अरे आगलो संदेशो पुगतो हो अपने तई डाकघर नीमनाबाद जिला जींद हरियाणा से,
0: भेजो करना है वो
1: वो लिख्यो है जसवीर सिंह अरोड़ा।
0: ठीक है।
1: अरे लिखा है कि आदरणीय प्रसारक महोदय जी, सहप्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार, राम राम, थाने भी मोकलो सारी
1: अन्य भी कार्यक्रम बहुत ही दया आने लग रहे हैं।
0: देवा मोकलो सारो धन्यवाद। अरोड़ा जी, कार्यक्रम सुनता रहो और प्रतिक्रिया लिखो, कि थोड़ी सी लंबी प्रतिक्रिया लिखो।
1: हाँ प्रतिक्रिया लंबी लिखे तो बढ़िया लगेगा आपने
0: हाँ
1: भी। अरे आगलो संदेशो पूग तो करे अपने ती लिखण वाला है चैनपुरा धोरीमन्ना जिला बालोतरा से,
0: दूर आए वो भी
1: हाँ
0: संदेश,
1: दूर आए हुए।
0: बिल्कुल
1: लिखण वाला है जगदीश भारती गोस्वामी,
0: ठीक है।
1: के ये भी लिखे है कि मैंने प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगा है और प्रोग्राम भी रोज ही सुना के।
0: देखो रोज सुनो और प्रतिक्रिया थे कौन लिखी नहीं माँ, आ तो गलत बात है, थे प्रतिक्रिया लिखो ताकि मैं ही मैं बांचा और कार्यक्रम की अच्छी माड़ी जो भी प्रतिक्रिया बा लिखो ताकि मैं कार्यक्रम में सुधार करा।
1: तो भारती जी आप आस आई करा कि अगला प्रोग्राम जितना भी सारा सुन गए मांगी
0: हाँ
1: प्रतिक्रिया लिख सी, और
0: बिल्कुल,
1: प्रोग्राम में आप के और बढ़िया कर सका वह भी बात नहीं लिखा
0: बा भी
1: गया।
0: लिखा है बिल्कुल सही है। अभी अच्छो है तो देखो मार वो भी हौसलो बड़े,
1: हाँ ब्रो
0: और जे थोड़ी बहुत कमी है तो मैं बा कमी दूर करा।
1: सही है सही है।
0: बिल्कुल
1: तो आगलो संदेशो पूग तो करियो है लिखण वाला है आकली दीवान मध्य प्रदेश से,
0: ठीक है।
1: लिखियो है रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी।
0: के लिखा है दुर्गाराम
1: ये
0: भाई?
1: लिखा है कि चौपाल प्रस्तुत करता ने मारा राम राम, और
0: राम राम सा।
1: चौपाल कार्यक्रम में खेती किसानी की थे जानकारी दो वह मैंने बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद लग गए,
0: ठीक है।
1: और सागे सागे कह जकी थी राजस्थान की माटी की खुशबू में जका थे लोक गीत सुनाओ नहीं बेतो के माने यहाँ जुम्मन खातर मजबूर कर दे
0: वाह
1: लगे।
0: जी वाह, देखो यहीं शू पतो चले कि आपनी मेहनत सार्थक तो है।
1: जी जी जी
0: भी कार्यक्रम सुने और सागे एक खेतियों संबंधी जकी जानकारी को फायदा उठावे, तो इशू भी आपने हौसलो बढ़े और आगे भी सुनवानता रहे से इन तिरंगी जानकारी, और थे कार्यक्रम सुनता रहो और प्रतिक्रिया लिखता रहे। देवा मोकलो सारो धन्यवाद।
1: जी। तो मुकेश भाई
0: हाँ आपने कने कई मेल आईडा है, बे मेल भी शामिल कर लिया दुर्गाराम भाई,
1: जरूर सा जरूर।
0: तो मेल आपने ताई जको आयो है वो भेजे है आपने। मेल मुकलावा शू भेजनिया है मदन बरोड़, मंजू बाला, प्रीति बरोड़, दिव्या बरोड़, हितेश बरोड़, कामना बरोड़, लुभानी, आरती, अजय पेंटर, मुकेश पेंटर, राजू पेंटर,
1: के लिखे बातरी
0: और सागे नहीं नाम अजय और है दुर्गाराम भाई,
1: अच्छा अच्छा
0: माऊ बापू को नाम तो रह गयो
1: नहीं
0: हनुमान
1: माऊ बापू को
0: बरोड़।
1: नाम तो जरूर है
0: हाँ नाम है हनुमान बरोड़ और इमरती देवी बरोड़।
1: जी।
0: ये लिखे है कि कार्यक्रम आना अच्छा लगे और मैं रोज सुना, बाकी बात भाई सागी की प्रतिक्रिया कौन लिखी।
1: बस आऊं भी आई आस करा कि अगला जितना भी प्रोग्राम अपना आसी बने रोज सुनसी और प्रतिक्रिया
0: हाँ
1: जरूर लिखेगा।
0: बिल्कुल, ओ मेल आयो है आपने ताई राजनगर शू भेजनिया है सोन लाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, शो प्रकाश, सुनील जांगिड़, धनराज जी भांबू, प्रवीण सरावगी, साबराम स्वामी। ये लिखा है कि पत्रोत्तर चौपाल कार्यक्रम पेश करता मुकेश चावरी और दुर्गाराम जी ने घनी घनी राम राम।
1: राम राम सा राम राम।
0: सागे लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम में सगड़ा लाइव सुना और थारे शून निवेदन रहे कि कम से कम चौपाल कार्यक्रम में पत्रोत्तर और गीतार और गजरो दो आवाजा में पेश करने की मेहरबानी करो सा। देखो आ आंगी तो फरमाइश पूरी होने ला रही है, आज दो आवाजा में पेश
1: जी
0: करने ला
1: जी
0: रहे
1: जी
0: हैं।
1: हाँ जरूर होने लग रहे साहब।
0: मुकेश जी थारी बोली और थारो प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत ही निरालो, ऐसा बड़ो आनंद आवे। चौपाल में जत थे और नवीन जी कार्यक्रम ले गयो, देखो थे कार्यक्रम को आनंद उठाओ और आवाज़ तो देखो मीठी सारंगी है,
1: जी
0: थे
1: जी
0: थारी आवाज़ को नहीं आन ला रही, थे संदेश का माध्यम थे आ चीज़ प्रदर्शित कर रहे हो कि आवाज़ और व्यवहार थारो भी बहुत बढ़िया है, मीठो स्वभाव है, और दो आवाज़ा का माँ पेश करने ला रहे हैं। दुर्गाराम भाई की भी आवाज़ बहुत शानदार है और कार्यक्रम पेश करना को और बात है प्रतिक्रिया में थे माने बताओ।
1: तो अभी वो मुट अपने मिठो सो मेल लिख के
0: मिठो
1: भेजे
0: सो मेल
1: नहीं।
0: लिख गए भेजो, देखो प्रतिक्रिया की आप बात करने लगे तो संगोपांग मात्रा में प्रतिक्रिया लिखी है।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: आगे भी यहाँ लिखे है कि चौपाल करके में लोक भजन और लोकगीत और प्रोग्राम पेश करने का जो को अंदाज है वो मैंने पसंद आया, शुक्रवार ने गीतारो गजरो में लोक भजन और लोकगीत सुनाया वे भी पसंद आया, मारो पत्र भी शामिल करो इंगे वास्ते धन्यवाद। चौपाल में कृषि संबंधी जानकारी, मौसम, बाजार भाव और पशुपालन संबंधी जानकारी दो बा भी पसंद आवे, जैविक खेती।

0: के बारे में बहुत सी जानकारी दो, बे बड़ी फायदेमंद होवे सर।
1: जी बात तो है ही बात रही।
0: देखो अब आपने तो उथलो ही कौन बनने ला रहे हो, आशुआ तो इतनी बात लिख दी।
1: तो अन आपा देवा धन्यवाद।
0: हाँ और वो जको अपने ताई मेल आए हो, आए है कनवाणी रावत सर शू भेजनिया है कृष्ण जी सिहाग।
1: जी
0: आ प्रतिक्रिया लिख के भेजिए कि मैं थारो प्रोग्राम रोज सुना और कार्यक्रम बहुत अच्छो लागे।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओ मेल आयो है अपने ताई गांव खोखराम वाली श्री गंगानगर शू भेजनिया है विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा और सगुन बरासा।
1: विनोद जी के बात लिखा है।
0: ये लिखा है कि दुर्गा राम भाई और मुकेश भाई दोनों ने मारी तरफ शू घनी घनी राम राम, थाने भी विनोद जी घनी घनी राम राम
1: आने पूरा परिवार ने मोकली मोकली राम।
0: राम राम। और सागे लिखा है कि चौपाल में रोजी ना सुना घणो ही दाय आवे, चौपाल में गीत भजन नाटक और खेती संबंधित थे जकी जानकारी देव बा घनी फूटरी लागे सा, नरमा में पहली स्प्रे किसी अवस्था में करा जानकारी देव सा।
1: जरूर सावा तो जानकारी देनी जरूरी बने। तो मुकेश भाई बताओ दिखान।
0: देखो दुर्गाराम भाई ई चीज की जानकारी आपा अपने अगला प्रोग्राम में दे सा, डॉक्टर को पूछ के देवांगा, आपा खड़ी
1: हाँ
0: जानकारी दे दिया रे खड़ी गलत तरीका से छिड़काव कर दिया
1: सही है सही है
0: तो खड़ी
1: सही है।
0: लेने का देना पड़ जाए।
1: हाँ बात भी सही है।
0: हाँ तो आपा जानकारी डॉक्टर को राय लेके पूछ के फेर ही देवांगा, इया आपा हवा में लटकोन मारा
1: हाँ
0: नहीं।
1: सही है। और उसके अन्य अगला कोई प्रोग्राम आगे मां आपा जिका अपना खेती का विशेषज्ञ बनने भी बुला के पूरी जानकारी दिला दे
0: पूरी
1: आने।
0: पहली सप्रे की आखिरी सप्रे ताएंगी जानकारी दिला देंगा।
1: हाँ सही है सही है।
0: हाँ बिल्कुल। तो दुर्गाराम भाई आपा मेल शामिल कर लेंगे, पहला आपा सुना दें एक भजन
1: सुनाओ सा।
0: सुनो सर।

0: सुनियो दुर्गाराम भाई भजन,
1: राम निवास राव की आवाज में सुनियो,
0: तोड़ी
1: की कर जावर
0: मोहन शुप्री तड़ली।
1: वाह वाह, आज की प्रेम की जकी हेत की अपने जकी स्नेह की जकी आप प्रीत है नहीं आ।
0: बिल्कुल
1: आ, तो बस हर श्रोताओं से वगैरह तरीके की जकी अपनी
0: बिल्कुल
1: भाव है वो बने रहे।
0: तोड़ी की कर जावे,
1: तोड़नी है ही कोने नहीं।
0: हाँ,
1: आपा तो बधानी है,
0: बधानी है बिल्कुल।
1: वो प्रेम बद तो रहेगा कोई
0: यहीं बद तो रहेगा बिल्कुल।
1: आगलो संदेश पुग तो है भाई
0: बांचो सा,
1: और लिखने वाला है पिंगा वाला चौक गुराया जालंधर से।
0: लिखे लिखे
1: है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत मक्कड़ और कमल सानी।
0: ठीक है,
1: ये लिखे है कि सारा किसान भाइयों ने राम राम और गीता रो गजरो के कार्यक्रम में सुनियो लारला दिना बहुत ही अच्छा लगे।
0: बिल्कुल, देखो किसान भाइयों ताई आंगी राम राम पुगन ला रही है और गीता रो गजरो कार्यक्रम में सुनियो देवा मोकलो सारो धन्यवाद।
1: अर्ज की कह कथे खेतीबाड़ी की जकी बातें बताओ नी बे माने बहुत ही बढ़िया लगे।
0: बिल्कुल मक्कड़ साहब थे, खेतीबाड़ी की बातें सुनो और इंशु फायदो उठाओ, जद है मजा आएगी बात। तो आपा सुना और बी चीज़ ने ऊपरा के टपा दें फिर तो देखो मतलब बड़ी बात को नहीं, मारी मेहनत को देखो फल मिलनो चाहिए।
1: नहीं ई बात पर गौर भी करेगा और अगली बारी जो को अपनो ओ प्रोग्राम आओगे नी आपकी प्रतिक्रिया भी
0: बिल्कुल
1: आस करा के लिख के भेजेगा।
0: बिल्कुल,
1: और अगलो संदेशो पूग तो है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल।
0: कठों भेजिए दुर्गाराम भैया,
1: कोई पतो तो लिखियो कौन सा
0: लिखियो कौन नहीं।
1: अरे ये लिखे है कि आज कुछ कुछ चौपाल है नी कभी मैं मन शामिल कर लिया।
0: देखो शामिल तो कर लियो लेकिन अब यहाँ के बेरो लगे थे खटू भेजे तो सागे की नाम पर तो लिख गए भेजो, तो अब बोधराज खोरवाल तो देखो खटे कोई और भी हो सके।
1: हो सके ना तो कोई आपको जगह को नाम लिखियो और ना कोई कार्यक्रम कोई सुन गई कोई कोई प्रतिक्रिया लिखी
0: है। माने भी बेरो लगे बीबी फलानी जी गाऊ ए श्रोता अपन सुनने लागे,
1: तो बोधराज जी से आप आई निवेदन करा कि अगला प्रोग्राम सुनेगा।
0: हाँ।
1: बाकी प्रतिक्रिया लिखेगा और सागे खटू लिखियो है वो भी लिख
0: वो भी लिख के भेजे बिल्कुल।
1: आगलो संदेश पूग तो है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से।
0: के लिखे हैं
1: ये लिखने वाला है अपने सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल। एक लिखे है राम राम जी, प्रोग्राम चौपाल कमे रोजी न सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गोदारा जी,
1: खेती से संबंधित जानकारी के माने बहुत ही दाय आवे और हमारे काम आवे।
0: ठीक है,
1: और बाकी का प्रोग्राम भी सुना के मौसम की जानकारी बड़ी माने लाभदायक लागे। और आने वाला जो प्रोग्राम है मैं कोई नाटक जरूर सुनाओ।
0: देखो नाटक की आप पहला ही बताए हो कि गुरुवार को आप सुनवाया करा और एक कार्यक्रम सुनता रहे सी तो आने जरूर नाटक सुनने मिल सी, और होश का आने वाला दिन में आने कोई नयो नाटक भी सुनने मिल
1: जरूर जरूर।
0: तो एक कार्यक्रम सुनता रहे और आपकी प्रतिक्रिया में देता रहे, बाकी अपना नियमित श्रोता है देखो आंगी प्रतिक्रिया आवे ही है हर बार।
1: हाँ जी हाँ जी, तो आगे बात लिखी है कि गीता रो गजरो पेश करने वाला ने कुमारी राम राम के गीता रो गजरो जो को पेश करे नी बन अभी राम राम और लोक गीत के मारी कि माता गुड्डी देवी जी है नी कपन बहुत ही अच्छा लगे बहुत दाय आवे।
0: देखो बां वास्ते ही सुनवावा आपा भजन तो बडेरा वास्ते सुनावा सागे मां बिचारे की गीत भी सुना दिया जका युवा जका छोरा है बांग बान पसंद आ जाए
1: जरूर सा जरूर।
0: हाँ।
1: अरे आगे लिखे हुए कि गर्मी में बेजबान जका पंछी है नी बांग खातर पानी अपने बारे कोई दरखत है बिंग नीचे रखनो या फिर गरम रखनो बहुत ही जरूरी।
0: आशानी बात कही देखो इन चीज पर सारा जना अमल भी करेगा ध्यान भी देवेगा क्योंकि पशु पक्षी है जगह छोटा पक्षी है बे आपने बोल के तो बता।

0: कौनसक है।
1: सही है।
0: तो आपनी छोटी सी जकी मेहनत है और आपने पक्षियों को अगर बचाव हो तो करनी चाहिए।
1: जरूर सर जरूर। तो ये तो मुकेश भाई आपने तो संदेश पुगता होया, कोई मेल और पुग्या क्या आपने तई?
0: मेल आपने तई जका आयडा है बेबी मैं पुगता कर दूं।
1: बांचो सा बांचो।
0: वो मेल आयो है आपने तई सादुल शहर शू। भेजनिया है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़
1: जी।
0: आ प्रतिक्रिया आपने लिखी है कि पत्रोत्तर चौपाल कार्यक्रम पेश करता मुकेश चांवरिया जी और दुर्गा राम भाई ने रामा श्यामा
1: राम राम जी राम राम
0: राम राम मोकली मोकली। सागे लिखे है कि बहुत ही अच्छो लगे दोनों भाइयों की मीठी मीठी बातें सुना। देखो मीठी मीठी बातें तो भाई जड़ा जद मीठी मीठी बातें ही हो गए कभी थारू मिलांगा जब थारू भी मीठी मीठी बातें
1: मिलन लग रहा नहीं रिवार्ड जी को आपने ती।
0: हाँ अब मिलन लग रही है थारू
1: और सारा श्रोता मंगा जो अपने संदेश भी पुग गया मेल भी पुग गया
0: बिल्कुल
1: तो सारा राम रमी होने लगे सारा बातचीत होने लग गया सारा मिलन लग रहा
0: मिलन लग रहा बिल्कुल सही बात है। आगे लिखे है कि कार्यक्रम में रोजिना सुना जिस और हो बहुत सारी जानकारियां मिले खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियां गीत संगीत लोकगीत बाजार भाव मौसम की जानकारी दियो हर नाटक रूपक अच्छी अच्छी जानकारियां दियो बे माने गणित आया हुआ
1: जी। तो अन्य सुनने वास्ते भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ सागे लिखे है कि आपने दुर्गा राम भाई खेतीबाड़ी अच्छी संभाल रखी है काकड़िया काचर खूब बीज रखे मुकेश भाई थारा खातर लियाया का एकला एकला ही खावे।
1: मुकेश भाई थारा खातर तो लिया लियाया और जितना भी सुनने वाला सारा अपना भाई बंधु है नी अरे राम कुमार जी ने आने भी नुनता के थे भी और कदिया पसागे बैठ के जिम्मा।
0: बिल्कुल रेवाड़ साहब ने बता देवा कि देखो हाँ काचर काकड़िया बीज रखे है और खुआया भी है और कदी थे भी लिया दो मैंने काचर काकड़िया तुम भी खा लिया।
1: जरूर था जरूर
0: सादुल शहर का भी काचर काकड़िया खा के देख लिया।
1: सादुल शहर की तो मुकेश भाई टींड सी बहुत ही प्रसिद्ध है।
0: तो फिर तो आप काचर काकड़िया तो ठीक खा लेंगे टींड सी मंगवा लिया।
1: जरूर जरूर रेवाड़ जी अगली बार जरूर लेके आसी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगलो जो आपने ताई मेल पुग्यो है वो है रूपाणा बिश्नोईयान सिरसा हरियाणा से सूरजमल मास्टर पाल टेलर भीम टेलर चिराग दुर्गा शक्ति
1: जी।
0: ये लिखा है कि समस्त आकाशवाणी सूरतगढ़ परिवार ने घनी घनी राम राम सा।
1: राम राम जी राम राम।
0: सागे एक है कि नरमे की फसल की सुरक्षा के बारे में जानकारी दिलवाओ।
1: जरूर साबाना अगले प्रोग्राम आंगे अंदर आप जरूर जानकारी दिलावांगा कि की तरह को आप जो बीमारियां हैं नरमंग में आवे की तरह को मांगो उपचार कर सका आप। हाँ,
0: कार्यक्रम सुनता रहे
1: जी।
0: वो मेल आए हुए आपने तई गांव डाणी लाल खां छू भेजनिया है जावेद खान अरमान खान इमरान खान सीमा बानो और विनोद खान
1: के बात डी लिखिया।
0: ये लिखा है कि चौपाल हमें बहुत अच्छा लगता है हमारी जान है और आगे लिखा है कि गीत सुनाया करो और नाटक सुनाया करो। देखो दुर्गाराम भाई आंसू एक ओल्म है शिकायत है कि ए तो हर बार एक ही संदेश भेजे
1: और ये तो सागा अपना बहुत पुराना स्रोत है सागा।
0: देखो काफी टाइम से वो संदेश आप बांचन ला रहे हैं और इनमें कोई भी प्रतिक्रिया कौन लिख के भेजे नहीं बस वो एक ही संदेश आंगो वो कह रहे हैं वो कॉपी पेस्ट मार के भेज दे। तो प्रतिक्रिया लिखो ताकि माने भी कि बांचना में अच्छो लगे और थाने भी सुनना में कि अच्छो लगे।
1: जावेद भाई भी अगली बारी आस करा के प्रतिक्रिया लिखेगा और जगह दूसरा श्रोता मंगा आज आपने ती मेल भी पुग्या नहीं और संदेशा पुग्या वे भी प्रतिक्रिया जरूर लिखेगा और प्रोग्राम सुनेगा।
0: हाँ बिल्कुल। वो मेल आयो है आपने ताई लखवाड़ी हेड शू मास्टर भंवरलाल कृष्णा सौरभ विशाल लक्षिता नव्या राजबाला मोहम्मद रफीक मुकनाराम ममता। ये लिखा है कि राम राम जी पेशकश सुनी सुनी लगी सा
1: जी
0: गीत भजन नाटक खेतीबाड़ी की जानकारी दिलाओ बढ़िया लगे।
1: आंगो मेल करने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद करा।
0: बिल्कुल। अगलो जो मेल आयो वो आयो है गाँव गंदेली छू ये लिखा है कि मैं थारा नियमित श्रोता हाँ और ये है पालाराम जी सिहाग रमेश संदीप आंगा मम्मी पापा विमला सिहाग मोनिका भावना पोतो राघव सिहाग। ये लिखा है कि थारे कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा करा बित्ती कम है कार्यक्रम पेश करने वाला ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम सा अभी भजन सुनायो बहुत बढ़िया लागियो कृषि संबंधित फसल भाव जानकारी दो बा बहुत बढ़िया लागे सा।
1: हाँ कोई बहुत बहुत धन्यवाद करा।
0: बिल्कुल। ओ अगलो मेल आयो है दुर्गा राम भाई आपने लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा छू भेजनिया है बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया नरेंद्र कुमार। ये लिखा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ का सगला प्रोग्राम सुना मैंने घना बढ़िया लगे आकाशवाणी परिवार ने मारी तरफ से घनी घनी धन्यवाद और बधाई है सर।
1: अनमी राम राम देवा।
0: तो दुर्गा राम भाई अब चलता चलता एक गीतड़ो और सुन लिया
1: और सागे मुकेश भाई ब्याह का जिका दिन है भी बिचारा लग रहा है बहुत सारा जिका ब्याह मंडन लाग रहा है या फिर आगे मंडेगा तो कोई ऋण जुड़ाट कर तो बढ़िया संगीत सुनाओ
0: लियो सुनो सा सागे सगला श्रोतावा ने भी सुनावा।

0: सुनियो दुर्गाराम भाई गीत
1: बहुत ही फूट रोगी सुना ऐसा
0: बिल्कुल और कार्यक्रम किसोक लागियो आप श्रोताओं उम्मीद करा कि भाई आपने अच्छी प्रतिक्रिया देवेगा पढ़ना बापा चला
1: चालो सा
0: राम राम सा राम राम
1: राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आपने मन्ना डे को सुना। फिल्म का नाम था दर्पण। आइए सुने बिन बादल बरसात फिल्म का गीत। आवाज हेमंत कुमार की है।

आइए श्रोताओं अब सुने पतिता फिल्म का गीत, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दुर्गा राम नायक की तरफ से दोस्तों, आज अपने एक ऐसी फिल्म की चर्चा करेंगे और गीत सुनेंगे जिस फिल्म के लिए नायक और नायिका बहुत प्रसिद्ध हुई। वो नायक नायिका सच्चे प्रेम प्यार की मिसाल है। जब भी उन नायक और नायिका का जिक्र होता है तो उनके गांवों के नाम तख्त हजारा और झंग हमारे जहन में अपने आप आ जाते हैं। और जब कभी भी इस फिल्म के गीत हमारे कानों को सुनाई देते हैं तो फिल्म का नाम भी हमारे दिलो दिमाग में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने चर्चा कर रहे हैं हीर रांझा फिल्म की। हीर रांझा एक ऐसी कहानी, रूहानी प्रेम कहानी, जिस पर हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य बहुत सी भाषाओं में फिल्में बनी हैं। हीर रांझा फिल्म पर चर्चा और करेंगे, पहले सुने ये प्यारा सा प्यार भरा गीत।

श्रोताओं, रांझा तख्त हजारा गांव का सुंदर बेपरवाह सा युवा, सात भाइयों में सबसे छोटा और लाडला, और हीर झंग गांव की खूबसूरत युवती। रांझा हीर के गांव झंग अपने दोस्त की शादी में परिवार वालों के रोकने के बावजूद जाता है, जहां हीर रांझा एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। रांझा हीर के गांव झंग में ही रह जाता है। हीर रांझे को भैंसे चराने के लिए अपने यहां रख लेती है, और जब रांझा भैंसों को चराने के लिए जाता है तो पीछे से हीर रांझे के लिए खाना लेकर जाती है। दोनों की गहरी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों प्रेमियों का मिलना हीर के चाचा को अच्छा नहीं लगता। हीर का चाचा हीर के पिता को रांझे और हीर की प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं, जिससे दोनों प्रेमियों का मिलना बंद हो जाता है।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। आज की फिल्म है हीर रांझा।

श्रोताओं, हीर रांझा फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद और इस फिल्म के लेखक वारिस शाह हैं। फिल्म के संवाद कैफी आजमी ने लिखे और पटकथा चेतन आनंद ने लिखी। राजकुमार और प्रिया राजवंश इस फिल्म के मुख्य नायक और नायिका हैं। इनके अलावा प्राण, पृथ्वीराज कपूर, जयंत, जीवन, अजीत, कामिनी कौशल, इंद्राणी मुखर्जी, अचला सचदेव, तबस्सुम और टुनटुन ने अपनी

श्रोताओ, हीर राँझा फिल्म के सभी गीत बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कहानी को और रोचक बनाते हैं। सभी गीत कैफी आजमी ने लिखे हैं और इन गीतों के लिए मदन मोहन ने बेहतरीन संगीत दिया है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। आज की फिल्म थी हीर रांझा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8:30 होने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आज मेरे साथ हैं
1: प्रशांत कुमार। नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। अब स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। तो प्रशांत, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
1: जी धर्मेंद्र, फीफा विश्व कप में फ्रांस, मैक्सिको और नॉर्वे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आज इंग्लैंड का सामना कांगो से और बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैच के सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कल दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्याना सवालेंका महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंची। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सेनर का दूसरे दौर का मुकाबला जारी। और बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। भारत का एक पदक पक्का।
0: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप का रोमांच सबके सर चढ़कर बोल रहा है और राउंड ऑफ 32 के मैच आज भी खेले जाएंगे। रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। फीफा विश्व कप की पिछली बार की उपविजेता फ्रांस की टीम स्वीडन को हराकर इस बार राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। मैक्सिको ने इक्वाडोर पर जीत के साथ 40 साल बाद नॉकआउट का मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं नॉर्वे आइवरी कोस्ट को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में स्वीडन पर फ्रांस की 3-0 की जीत में एक बार फिर किलियन एम्बापे सबसे बड़े स्टार साबित हुए। विश्व कप में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एम्बापे ने 45वें मिनट में अलिसो के पास को गोल में बदल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 53वें मिनट में बैडल बारकोवा ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। इसके 21 मिनट बाद फ्रांस के लिए तीसरा गोल फिर एम्बापे के जरिए आया और टीम की जीत लगभग पक्की हो गई।

0: say, and followed in by Dembele.
1: Denied by millimetres, one of the great goals.
2: It certainly would have been, and the technical ability that you need to execute this. His liquid goal, Michael Olise, absolutely wonderful to watch.
0: And Mbappe! Star after French star. How they twinkle! The love here is for their leader. Didier Deschamps, at a time of personal loss, enveloped by the players who looked at him.
3: इस गोल के साथ ही टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के 6 गोल हो गए हैं। उन्होंने इस एडिशन में टॉप गोल स्कोरर की लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। साथ ही वे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे अधिक 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप करियर में 18वां गोल किया और मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। अब फ्रांस का सामना पैराग्वे से 5 जुलाई को होगा। उधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता। एक समय मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था, लेकिन नॉर्वे के एरलिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में इस विश्व कप का अपना 5वां गोल कर टीम

0: अधिक 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बापे ने वर्ल्ड कप करियर में 18वां गोल किया और मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल पीछे हैं। अब फ्रांस का सामना पैराग्वे से 5 जुलाई को होगा। उधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता। एक समय मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था, लेकिन नॉर्वे के एरलिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में इस विश्व कप का अपना 5वां गोल कर टीम की जीत तय कर दी।
1: So they've replied to one with one of their own. Oh, it's a lovely ball. For Berg, for Haaland. He rolled it into an empty net. He gets all types of goals, but they all count the same. And on the big stage, this is a mighty one.
0: सह मेजबान मैक्सिको भी इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। 1986 में अपने घर में खेले गए विश्व कप में बुल्गारिया को हराने के बाद पहली बार जब मैक्सिको ने नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है। जूलियन क्विनेक्स और राउल जिमनेज ने विजेता टीम के लिए गोल किया।
1: D'Ivoire, gallant effort. They're out by the narrowest of margins, and Norway will play Brazil. In the round of 16.
0: हम आपको बता दें कि मैक्सिको की टीम 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 और 2018 विश्व कप में लगातार 7 नॉकआउट मुकाबले हार गई थी। वही 2022 कतर विश्व कप में टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
2: प्रशांत, जब फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट की बात भी क्यों करना कर लें?
3: जी धर्मेंद्र, बिल्कुल। एशिया के सबसे पुराने डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस साल 24 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें से 60 टीमें टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही हैं। प्रतियोगिता के मुकाबले 25 जुलाई से 23 अगस्त तक 5 शहरों में खेले जाएंगे।
4: दुनिया के तीसरे सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज कोलकाता में होगा, फिर 4 सप्ताह तक टीमों के बीच मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में भी खेले जाएंगे। वर्ष 1888 में शुरू हुए डोरन कप का फाइनल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में एक बार फिर इंडियन सुपर लीग क्लब, आई लीग टीमें, सेना की टीमें, उभरती हुई घरेलू टीमें और विदेशी टीमें एक साथ खेलेंगी। साथ नई टीम में श्रीलंकाई सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स एफसी और मेघालय प्रीमियर लीग चैंपियन नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल का गढ़ कोलकाता एक बार फिर टूर्नामेंट का मुख्य केंद्र होगा, जहां विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण और किशोर भारती क्रीड़ांगण में 2 ग्रुप के मैच, उद्घाटन मैच, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल तथा फाइनल खेला जाएगा। ये शहर रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट, 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाल एफसी, मोहम्मदन एससी, साउथ यूनाइटेड एफसी, सीआईएसएफ, भारतीय सेना और नई टीम बागपत एफसी और समलेश्वरी स्पोर्टिंग की मेजबानी करेगा। रांची पहली बार डोरन कप की मेजबानी करेगा, जहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में 26 जुलाई से 16 अगस्त तक लीग मुकाबले और 1 क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। ये शहर जमशेदपुर एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायुसेना और डिफेंडर्स एफसी की मेजबानी करेगा। उधर इम्फाल का खुमान लंपक स्टेडियम 28 जुलाई से 17 अगस्त तक लीग मुकाबलों और 1 क्वार्टर फाइनल की मेजबानी करेगा। इस ग्रुप में स्थानीय क्लब TRAU एफसी और निरोका एफसी, भारतीय नौसेना और पदार्पण कर रही एफसी रेंगडाई शामिल हैं। शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 जुलाई से 20 अगस्त तक लीग मुकाबलों के अलावा 1 सेमीफाइनल मैच होगा। इस मैदान पर शिलोंग, लाजोंग एफसी, नोंगसे एसएस एंड सीसी, लैंगसनिंग एफसी और पदार्पण कर रहा मुंबई एफसी खेलेगा। गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम 1 से 13 अगस्त तक लीग चरण के मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मौजूदा चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस ग्रुप की मुख्य टीम है, जिसमें एफसी 1 बोडोलैंड एफसी और कार्बी आंगलांग मॉर्निंग स्टार एफसी भी शामिल है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: दोस्तों, फुटबॉल की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 मैच की सीरीज की शुरुआत आज से चेस्टरली स्ट्रीट में होने जा रही है। आयरलैंड के हाथों पिछली सीरीज में 2-0 की हार के बाद अब हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिल में यही सवाल है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड की तेज उछाल भरी पिचों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी और क्या पिछली सीरीज में बेंच पर इंतजार करते रह गए वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। सुनिए ये रिपोर्ट।
5: श्रृंखला

0: एक सवाल अनेक। सबसे बड़ा सवाल ये कि आयरलैंड के हाथों करारी शिकस्त के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में मौका मिलेगा? क्या पिछली सीरीज में संजू सैमसन की दोहरी विफलता उन्हें बाहर बैठाने और सूर्यवंशी को मौका देने का बड़ा कारण बन सकती है? टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर इस बारे में कुछ साफ साफ तो नहीं कहते, लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पैक करने की बात कहकर काफी कुछ इशारा दे जाते हैं।
1: देखिए, अभी हर एक इंडिविजुअल जो जो टीम में खेल रहे हैं सबने परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं कि एक अकेले इंडिविजुअल ने किया है, बट हर एक को अपॉर्चुनिटी और एक तरीके का सिक्योरिटी हमें बिल्ड करना है ताकि हर एक इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस रहे गोइंग फॉरवर्ड इन टू द टूर्नामेंट्स। एंड जो जो लोगों ने पिछला वर्ल्ड कप जीता है डेफिनेटली उनको एक तरीके का आइडिया भी है कि कैसा खेले T20, और कंटिन्यूसली वो फॉर्मेट के एक तरीके के मेन पिलर्स रहे, तो फिर पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: सीरीज के शुरुआत के पहले भारत के सहायक कोच रयान टेन डोशी ने इतना तो कह दिया है कि सूर्यवंशी को भी किसी अन्य क्रिकेटर की तरह अंतिम एकादश में जगह पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा।
2: He's absolutely ready to play international cricket. There's no doubt about that. But I think it's not a question to say you can leave Sanju Samson out, a guy who, went a long way to winning India World Cup 3 months ago, a guy who's had a fairly good IPL. It's important in terms of giving players confidence and the message we're sending to players. We want to give guys a long run in the team. So, as ready as Vaibhav is and as excited we are all and you are all to see him play.
0: सवाल तो ये भी है कि पिछली सीरीज में बेअसर दिखी भारतीय बल्लेबाजी तेज और उछाल वाली मुश्किल विकेटों पर मेजबान टीम को कितनी चुनौती दे पाएगी। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद और सोनी बेकर जैसे बहुत तेज गति वाले गेंदबाज हैं, साथ ही आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे चतुर स्पिनर भी हैं। वैसे भी रिवर साइड ग्राउंड पर गेंदबाजी का दबदबा रहा है, यहां न्यूनतम स्कोर 138 और उच्चतम स्कोर 195 है। जाहिर है सीरीज काफी कठिन रहने वाली है, इस बात को कप्तान श्रेयस अय्यर भी मानते हैं।
1: All of us, we have played in England before. We know how the wickets are. Usually we see it on TV as well. Belfast, we played after so many years. It's not a reason, but I'm just saying that turning up over there, getting acclimatized to the wicket, to the conditions, we fell a bit short in terms of reading the outfield and getting accustomed to the conditions over there. And over here also, the dimensions are pretty much similar, but the ground is flat and you feel the vibe, you feel the stadium vibe, the crowd would be intense as well. We've played in such conditions, such situations before.
0: उधर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कप्तान हैरी ब्रूक, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथिल, विल जैक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटन जैसे नाम हैं। आयरलैंड के खिलाफ ट्रैक से उतरी दिखी भारतीय गेंदबाजी की अब और कड़ी परीक्षा होने वाली है। तेज गेंदबाजों के साथ साथ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स भी कसौटी पर कसे जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरलैंड से हार के बाद हतोत्साहित टीम में कप्तान श्रेयस को नया जोश और जीतने का जुनून भरना ही होगा, तभी इस कठिन सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन टीम अपना दबदबा बना पाएगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: और बात T20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। ICC ने T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान ने लगभग एक साल से नंबर वन की कुर्सी पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए, साहिबजादा फरहान तीसरे, फिल शॉल्ट चौथे, पाथम निसंका पांचवें और तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं। वहीं बात अब महिला T20 क्रिकेट पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया।
4: और प्रशांत, बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। प्रतियोगिता में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त अंडर 19 मिक्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन के यिरेंग तांग और यी जियांग पर 11-9, 11-6, 11-7 की शानदार जीत के साथ अंतिम चार में जगह बनाई।
3: और अब बात विंबलडन पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इटली के यानिक शिनर का मुकाबला पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस के साथ चल रहा है। सातवीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज देर शाम दूसरे दौर में मिश्र के स्टाफिनोस सित्सिपास के साथ खेलेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में टॉप सीड सबालेंका तीसरे राउंड में पहुंच गई है। नौवीं वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी

0: ओसाका ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है।
1: और उधर भारत के बेलावन संथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर टूर मुंबई स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। बैडमिंटन से एक खबर है प्रशांत, जापान के यात्सुओ शिरो में भारत के ध्यान संतोष ने आज उलटफेर करते हुए थाईलैंड के छठी वरीयता प्राप्त पुन्नातात प्रेम पुंगवोंग को पराजित किया। संतोष ने लड़कों के सिंगल्स के पहले दौर में 21-17, 21-18 से जीत हासिल की।
0: और धर्मेंद्र, बॉक्सिंग से भी एक खबर आ रही है। भारत अंडर 19 और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और उभरते खिलाड़ियों का मिला जुला दल उतारेगा। ये प्रतियोगिता 3 से 16 जुलाई के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होगी। मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298

0: रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में 125 वर्ष पुराने

0: पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर

श्रोता उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुगम संगीत। कलाकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में जगजीत सिंह को। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय है, कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोइन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे,

0: तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है, और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल

0: हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो, तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खड़ा हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है। गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
0: सरकार ने इसकी नींव रखी। जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं,
1: जी
0: तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफाम बोलते हैं, गूगल एप्पल
1: जी
0: वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
1: जी
0: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं, भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं, और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं, और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपये का भुगतान हुआ, वो भी
1: जी
0: एआई है।
1: जी
0: वो भी हमारे गाँव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी एआई के एक एप्लीकेशंस है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहाँ से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे सस्ता है,

0: जी
1: पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
0: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया है, और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूं। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
0: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माईगॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
0: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
1: काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं। हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें

0: अब आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे
1: जी
0: 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया।
1: जी
2: सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग का बोलते हैं कि
1: जी
2: बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से। और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी
1: जी
2: करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो IT, AI, सेमिकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमिकॉन, जैसे इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है।

0: डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट, ओके एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये AI के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा, जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी AI के लिए भी हम लोग को GPU चाहिए। अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का GPU चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है, और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक ले जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि OTP शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन या SMS या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज़ करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है, हमारे कुछ इकोसिस्टम में रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल

0: कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन करे हैं, अब
1: जी
0: ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीज़ें चाहिए जैसे वहाँ की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सकें और उनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक सकें। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन 1 जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफ़ी हद तक मुक्त किया गया है, काफ़ी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों, क्योंकि अगर आप हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी, जरूर। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि
1: जी
2: ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है
1: जी
2: जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर

0: परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: चर्चा का विषय है।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो मन भावन। निर्देशक व संयोजक हैं नवीन सिसोदिया। प्रस्तोता हैं रोहिता शर्मा।

हेलो मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को आज रोहिता शर्मा की ओर से नमस्कार। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत में कुछ जोड़ियां खास रही, खास इसलिए कि आप अपने एकल संगीत में मुकम्मल रहे, लेकिन ये संगीत शास्त्रीय संगीत रहा। यहां आपने वो ऊंचाइयां छू ली जो किसी के लिए भी ख्वाब से कम नहीं, लेकिन फिल्मों में संगीत देने का इसरार जब ऐसे बड़े फिल्मकारों ने किया जो लीक से हटकर काम करने के लिए प्रसिद्ध रही, तो इन्होंने जोड़ी भी ऐसी बनाई जो बेमिसाल रही। बात आज शिवहरि की जोड़ी की। शिव यानी शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक और हरि यानी बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया। आज चौरसिया साहब का जन्मदिन, उन्हें आकाशवाणी सूरतगढ़ अपने तमाम श्रोताओं के साथ जन्मदिन की मंगल कामनाएं प्रेषित करता है। आइए आपके संगीत से सजे गीत की एक वानगी सुने और श्रोताओं से

0: हेलो।
1: नमस्कार रोहितास जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी। आवाज हमें हमारे भाई लालचंद की लगती है।
1: हाँ जी, आवाज बिल्कुल लालचंद नाथ की है। आज 42 दिन हो गए तो मैंने सोचा चलो रोहितास जी से बात कर ही लेते हैं आज।
0: अच्छा कि आपने।
1: बहुत ही अच्छे है, घर परिवार में सब ठीक है और यही उम्मीद मैं करता हूँ आप लोगों के घर परिवार में, आकाशवाणी केंद्र में जब अब तक कुशल है, आगे भी ईश्वर कुशल मंगल रखे।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही लालचंद जी। रेडियो से प्रेम उतना ही है।
1: रेडियो से प्रेम दिन भी दिन बढ़ता जा रहा है जैसे उम्र बढ़ रही है।
0: अरे वाह, क्या बात है। उम्र आपकी खूब हो, रेडियो से आपका प्रेम बना रहे। और कौन लोग हैं आपके साथ, नाम बताइए।
1: मेरे साथ तो जो लोग हैं मैं बताऊंगा, लेकिन आपने जो कल कव्वाली बजाई थी रात को 10:30 पे कव्वालियाँ, तो अनोखी रात में आपने अमर अकबर एंथोनी के साथ जो कव्वालियाँ बजाई उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही अच्छी लगी हमें वो कव्वालियाँ आपके द्वारा बजाई।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
1: और आज की एक दिन है हरि प्रसाद चौरसिया का।
0: जी। बिल्कुल
1: हाँ जी, मशहूर बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का आज जन्मदिन है।
0: जी,
1: तो वो अपने जीवन के 87 बसंत पार कर चुके हैं, 88 में प्रवेश कर चुके हैं।
0: अरे
1: तो
0: वाह
1: हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको दीर्घायु रखे।
0: जी, बिल्कुल यही हमारी भी दुआ
1: और
0: है।
1: उन्होंने कुछ फिल्मों में शिव हरि के नाम से संगीत भी दिया था अपने साथी
0: जी,
1: शिव के
0: बिल्कुल
1: साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते हैं।
1: तो शिव हरि के संगीत निर्देशन में फिल्म लम्हे का गीत मोरनी बागा में बोले आधी रात
0: अरे वाह, क्या
1: वो
0: बात
1: सुनवा
0: है।
1: दीजिए।
0: राजस्थानी का मिला जुला ये गाना है, हम आपको जरूर सुनवाएंगे
1: हाँ, और मेरे साथ जो है उनके नाम लेना चाहता हूँ,
0: जी।
1: मेरे साथ मेरे पिताजी श्री दूलनाथ कत्ता।

0: मेरा छोटा भाई प्रेम, उससे छोटा तो मेरे घर से मंजू, अमन, अंकुश, राहुल, रीटा, दीपक, पीयूष और योगेश नाथ।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं?
1: रूपनगर फाजिलका पंजाब से प्रेम कुमार भार्गव जी।
0: प्रेम जी, आपने आखिरी बार फोन कब किया था?
1: मेरे को तो जी कम से कम 6 महीने की बात होगी जी।
0: अच्छा प्रेम जी, और कैसे हैं आप? सुनाइए अपने बारे
1: बहुत
0: में कुछ।
1: बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप तरफ से सभी उद्घोषकों को नमस्कार जी।
0: बिल्कुल, नमस्कार तो आपका पहुंच गया। रेडियो से प्रेम उतना ही है, खाली उद्घोषकों को नमस्कार
1: रेडियो
0: कर
1: से
0: रहे हैं।
1: जी मैं तो इतना प्रेम है कि रेडियो से तो मैंने तो स्कूल कॉलेज से इतना नहीं सीखा जितना रेडियो से सीखा है।
0: अरे वाह, क्या करते हैं आप प्रेम जी?
1: मैं जी सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम होगा उसकी तैयारी करता हूँ जी,
0: चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: और
0: आपको। किस
1: पंजाब में लेक्चरर कैडर की है जी।
0: विषय के हैं आप?
1: मैं हिंदी साहित्य से जी।
0: अच्छा, चलिए बताइए, और कौन लोग हैं आपके साथ?
1: मेरे साथ है जी मेरे भांजे हिमांशु, अमन, और जो मेरे कोचिंग के टीचर है जी एस के सर है और करण सर है, ऐसे करके है जी। और मैं एक अब सभी से निवेदन करता हूँ कि अब मानसून आ गया, एक एक पेड़ अवश्य लगाएं
0: जी बिल्कुल, ये तो आपने
1: और
0: बहुत
1: अगले
0: अच्छी बात
1: मानसून
0: कही।
1: तक उसकी पालन पोषण करें, देखभाल करें। अगर एक पेड़, वो कहते हैं ना एक पेड़ 100 पुत्रों जितना काम करता है।
0: बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। गाना हम आपको कौन सा सुनवाएं प्रेम भाई?
1: हमें सुना दो जी, आप मोहम्मद रफी का सुना दो जी, धरती फिल्म का गीत जो खुदा से आसमां देखता होगा।
0: बिल्कुल, मोहम्मद रफी की आवाज़ में धरती फिल्म का ये गाना हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, सुनिए।

0: हेलो
1: सर जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: सर जी, आकाशवाणी रेडियो सूरतगढ़ जी।
0: बिल्कुल, रेडियो सूरतगढ़ से बोल रहे हैं असी। तुसी
1: क्या बात है जी, मसाकाल लग रही। पंजाब से बोलता हूँ जी
0: की नाम है तोड़ा?
1: मैं जी, गांव मौड़कुंड, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब से जगजीत मट्टू बोलता हूँ सर जी।
0: अरे वाह, क्या बात है मट्टू साहब। अपनी 1 महीने पहले बात हुई थी, है ना?
1: सर जी क्या बात है जी, हाउ कॉन्फिडेंस छोटा जी, कहना तेज दिमाग जी छोटा, क्या बात है जी। हाँ
0: अच्छा मट्टू साहब,
1: जी सर
0: क्या चल रहा है अभी?
1: जी, मौसम अब कूल कूल हुआ है जी, पहले बहुत गर्मी थी जी, ते
0: हाँ,
1: बाहर से आने वाली है जी। हाँ जी, तेजी झोने की लवाई शुरू होगी जी पंजाब के। हाँ
0: बारिश आने वाली है।
1: जी,
0: आपको कैसे लगा?
1: बहुत अच्छा लगा जी, क्या बात है, भारी गर्मी थी सर जी।
0: नहीं, आपको अनुमान कैसे लगा कि बारिश आने वाली है?
1: सर जी, आपा नु आकाशवाणी रेडियो भी दसदा जी, यही दसदा जी सारा कुछ, हूं सानू तो की पता जी। गीत
0: आते सही बात है। अच्छा, तुहानू गीत केड़ा सुनाइए अज?
1: सर जी, पहला था जी छोटी इन्नी मिठी आवाज, तुसी बस उन दुआवां देता हूं जी, बाबा अल्लाह गॉड सोनू साडे बच्चियां नु तंदुरुस्ती बख्शे जी।
0: अरे वाह जी वाह, क्या बात है मट्टू साहब। गाना हम आपको कौन सा सुनवाएं?
1: गाना जी, एक फिल्म है जी, बगावत फिल्म है जी,
0: ठीक है,
1: उसमें बोल गुनगुना कर बताऊं जी।
0: बता दीजिए। पहले अपने साथ जो लोग हैं उनके नाम बता दें, फिर गाना
1: हाँ
0: गाइए।
1: जी हाँ जी हाँ जी, मेरे साथ है जी मान जोग सरदार प्रगट सिंह ढिल्लों साहब जी, तेजी
0: जी
1: मलकीत सिंह घड़ी साहब जी, तेजी
0: जी
1: सुखपाल सिंह नेशनल कॉलोनी बिठला जी, ते जथे यार बापू प्यारा सिंह जी, ते दो आदमी हो रहे जी, उसके नाम भी ले दूं।
0: हाँ, ले लो ना, क्या बात है।
1: हाँ जी, तेजी ये है जी सरदार परमजीत सिंह बाघा पुराना, बाघा पुराना, बाघा पुराना जी,
0: हाँ,
1: ते डीएस तगड़ साहब जी, ते अमरजीत सिंह बाला साहब ये रिटायर होया जी, मास्टर जी रिटायर होया जी,
0: इन्हानु असी सत श्री अकाल बुलाने हैं।
1: वो भी तो सत श्री अकाल बुलाते हैं जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल बुलाते हैं जी।
0: अच्छा, आप गाना बताइए।
1: गाना जी बगावत फिल्म है जी।
0: हाँ जी, आप गुनगुना के बताइए।
1: हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है।

0: वाह जी वाह, सुनिए गाना पसंद का।
1: ठीक है साहब जी, दोबारा सत श्री अकाल बुलाता हूँ जी, मेरी गॉड हेल्प जी विद फैमिली जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद
1: बाबा नानक साहब जी का, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते भाई।
0: नमस्ते जी
1: हाँ जी, हेलो मनभावन।
0: जी बिल्कुल हेलो मनभावन से बोल रहे हैं, आप कौन साहब?
1: हाँ जी, मैं सुरेंद्र चौखल बोल रहा हूँ जी, गांव सुरावाली से।
0: सोखल साहब, आपने पहले कब फ़ोन किया था?
1: सर आज पहली बार मिले। हाँ,
0: अरे वाह, क्या बात है, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: गांव सुरावाली जिला हनुमानगढ़ से जी।
0: अच्छा, सूरावाली से बोल रहे हैं आप, अपने जैसे कैंचियों से गोलूवाला की तरफ जाते हैं।
1: हाँ जी, केंचे से गुलवाला जाते हैं, बीच में आता है हमारा गांव सुरावाली।
0: अच्छा, कितना बड़ा गांव है सूरावाली?
1: हाँ जी, लगभग है 2-3 हज़ार वोटर।
0: अच्छा, ये गांव का नाम सूरावाली कैसे पड़ा, कोई है आपको अनुमान?
1: सर यहाँ पर सुना था, पुराना जोड़ था यहाँ पर, तो सूर आते थे पानी पीने के लिए,
0: जी
1: तो ऐसे इसका नाम सूरावाली पड़ा।
0: अच्छा, रेडियो आकाशवाणी सूरतगढ़ कब से सुन रहे हैं आप?
1: हाँ जी, वैसे तो बहुत साल हो गया, अब बीच में टाइम कम मिलता है। आप
0: हाँ,
1: मेन मेन प्रोग्राम सुनते हैं हम तो।
0: अच्छा क्या करते हैं आप?
1: हम तो खेती बाड़ी करते हैं सर।
0: खेती बाड़ी करते हैं, अभी तो यूं गर्मी है, धूप है, बारिश का कोई पता नहीं कब आएगी।
1: हाँ जी, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है सर।
0: अच्छा, खेत में क्या है, नरमा है अभी?
1: नहीं जी, अब की बार नरमा नहीं बोया हमने,
0: नरमे ने धोखा दिया
1: तो फिर
0: पीछे
1: नरमे में गुलाबी सुंडी आती है तो
0: जी।
1: परेशान हो गए हम। सिर्फ
0: फिर अभी
1: मूंग
0: खेत
1: की खेती कर रहे हैं।
0: मूंग की खेती कर रहे हैं आप।
1: हाँ जी
0: अच्छा, गाना हम आपको कौन सा सुनवाएं?
1: सर, अति मेरा सत्य फिल्म का गाना सुना दो, नफरत की दुनिया को छोड़ के। सर
0: अच्छा, ऐसा गाना क्यों पसंद आपको?
1: ये पुराने गाने हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब जो नए फिल्मों के गाने हैं ना, मुझे पसंद नहीं है
0: हाँ वो बात तो सही है, लेकिन नफरत की दुनिया तो नहीं, दुनिया तो प्यार की है ना?
1: सर। ऐसे ही वो गाना बहुत अच्छा है, फिल्म
0: गाना अच्छा
1: भी बहुत
0: लगता
1: अच्छी है।
0: जी।

0: जी बिल्कुल बिल्कुल, राजेश खन्ना की फिल्म है ना
1: बुजुर्गों के लिए सभी के लिए वो गाना बड़ी है जी।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे सुरेंद्र भाई गाना, और कौन लोग आपके साथ, नाम बताना चाहें तो।
1: सर एक मेरा पुत्ता है कल, वो तो अभी स्कूल गया, उसने बोला था
0: जी
1: कि दादाजी वो कॉल कर लेना आज।
0: हाँ, अरे वाह क्या बात है, क्या नाम उसका?
1: लव सोकल, गोलूवाला में पढ़ता है।
0: अरे वाह क्या बात है, रात को 10 बजे जब प्रोग्राम आएगा तब आप दोनों दादा पोता साथ में गाना सुन।
1: हाँ जी हाँ जी ठीक है,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, बहुत प्यारी बातें हुई आपसे, सुनिए प्रोग्राम।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: हेलो।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी। जी
0: अरे वाह, क्या बात है मेरा साहब, आप तो आकाशवाणी के नियमित हमारे श्रोता हैं।
1: जी जी बैठे
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हैं, चाय की दुकान है सर
0: चाय की दुकान है।
1: जी।
0: गर्मी में लोग उतनी चाय पीते नहीं होंगे जितनी सर्दी में पीते हैं,
1: हाँ जी कम कम बिकती है।
0: और इन दिनों अदरक की चाय की डिमांड तो बहुत कम होगी।
1: हाँ जी अब वो तो जी आगे सर्दी आएगी ना सब चलेगी।
0: बिल्कुल, सर्दियों में हम आपके पास आने वाले हैं चाय के लिए।
1: आओ जी आओ, स्वागत है आपका। परिवार
0: और सुनाइए मेरा साहब, सब ठीक है परिवार में?
1: ठीक है जी, और आकाशवाणी सूरतगढ़ परिवार ठीक है जी।
0: बिल्कुल, आप जैसे हमारे साथी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्या दिक्कत हमें? गाना हम आपको कौन सा सुनवाएं आज?
1: सर धर्मकांटा का गाना, ये गोटेदार लहंगा निकलू जाल के। जी
0: अरे वाह, क्या बात है, गोटेदार लहंगा है।
1: जी
0: ये गाना बड़ा प्यारा, आपको इतना अच्छा गाना किसने सुना? ये
1: ये पुराने गाने हैं सर जी,
0: अच्छे लगते हैं आपको?
1: हाँ अच्छे लगते हैं, पुराने गाने हैं ना।
0: चलिए ठीक है, इस गाने पे अपने नृत्य करेंगे और साथ में गाना सुनेंगे, ठीक है?
1: ठीक है जी,
0: ओके।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो।
1: जी नमस्ते, रोहितदास
0: नमस्ते जी।
1: जी साहब।
0: बिल्कुल, रोहिताश बोल रहा है।
1: जी मैं गांव चंद्रा तहसील धरना जिला बालोतरा से जगदीश भारती बोल रहा
0: अरे वाह, क्या बात है, गायक साहब, भारती साहब।
1: हूँ। जी, आज काफी समय से फोन लगा।
0: बिल्कुल, आपने तो पीछे कब किया था फोन, याद है कुछ आपको?
1: कोई याद नहीं, लगभग 4 साल से।
0: अच्छा, इन दिनों क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है?
1: बस बढ़िया, काम कर रहे हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जी
0: जी बिल्कुल, बारिश का इंतज़ार तो खैर सबको है, अपने को। और कौन लोग हैं
1: जी
0: आपके दोस्त आज के दिन आपके साथ? हाँ
1: मेरे मित्र है पवन कुमार डब्बी गुप्ता भी, और मेरे बच्चे हैं विजय भारती, महेश भारती,
0: क्या बात है।
1: और मल्लिका भी।
0: अच्छा, क्या सुनेंगे आप सब दोस्त?
1: आज दोस्तों लगता हूँ ये सावन को आने टाइटल
0: अरे वाह, सावन को आने दो, टाइटल सॉन्ग सुना दें आपको।
1: सॉन्ग करना।
0: ठीक है, सुनिए भारती साहब,
1: जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी,
1: गाँव पर नासिक कुलदीप सिंगला बोल रहा हूँ जी।
0: कुलदीप जी, आपने कब फोन किया था हमें आखिरी बार?
1: मेरा फोन लगा ही नहीं, पहली बार लगा जी।
0: पहली बार?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अरे वाह, क्या बात है, कुलदीप नाम बताया आपने।
1: हाँ जी हाँ जी। आपका नाम क्या सर?
0: मैं तो आपका दोस्त हूँ, नाम से क्या, आकाशवाणी सूरतगढ़ बोल
1: नहीं,
0: रहा हूँ
1: खैरी पता लग गया जी, पता भी लगे जी।
0: मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ बोल रहा हूँ, है ना,
1: हाँ ये तो है जी।
0: है ना,
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: नाम पर्याप्त है अपने लिए।
1: ठीक है सर जी।
0: अच्छा कुलदीप भाई, क्या करते हैं आप?
1: मैं जी दुकान करता हूँ किराने की जी।
0: किराने की दुकान करते हैं आप?
1: हाँ जी
0: क्या गांव का नाम बताया आपने?
1: कुड़ियाना फाजिलका जिला जी।
0: फाजिलका जिले में गांव पड़ता आपका,
1: हाँ जी कुड़ियाना गांव है जी।
0: कुढ़ियाणा। कुढ़ियाणा कितना बड़ा गांव है?
1: हाँ काफी बड़ा है जी।
0: काफी बड़ा है। स्कूल कितनी तक है यहाँ?
1: स्कूल मैट्रिक तक है जी।
0: मैट्रिक तक स्कूल है।
1: हाँ जी नजदीक
0: और आपकी दुकान स्कूल से कहाँ पड़ती है?
1: ही है जी।
0: नज़दीक है स्कूल के।
1: हाँ जी
0: अच्छा, बच्चों को आप अच्छी चीज़ें, है ना।
1: मैं तो आप लड़ता हूँ, ग्राहकों को भी अच्छी चीज खाया करो।
0: हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने। इन दिनों कुल्फियाँ खाते खूब लोग, है ना।
1: कुल्फी है जी, मोरा बड़ा बड़ा दुकान करता है जी, वो रखता है कंपनी की।
0: अच्छा,
1: हाँ देसी नहीं रखता जी।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप रेडियो कब से
1: मुझे
0: सुन रहे हैं कुलदीप भाई?
1: ये हो गए 58 साल। हाँ
0: अच्छा, 58 साल रेडियो सुनते हो गए।
1: जी हाँ जी।
0: उम्र कितनी आपकी?
1: उम्र है जी 65 साल।
0: अच्छा, 65 साल के आप हैं और स्वस्थ हैं एकदम, घूमते फिरते हैं खूब।
1: हाँ जी हाँ जी। साइकिल जाता हूँ जी डेली।
0: अरे वाह, क्या बात है कुलदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: गाना सुना जो आंखें मिलती है जिंदगी में
0: अरे
1: मोहब्बत कभी
0: वाह,
1: कभी।
0: क्या बात है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी,
1: हाँ जी
0: होती है दिल बिरों की इनायत कभी कभी, है ना कुलदीप भाई।
1: हाँ जी हाँ जी
0: आप दिलबर
1: जी हाँ जी
0: हमारे, आपकी इनायत हम पे हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: रोहिताश
0: जी रोहिताश बोल रहा हूँ। आप मुझे आपकी आवाज़ यूँ लगता है जैसे कोटा की तरफ से आ रही कहीं।
1: जी, मैं कोटा से कविता बोल रही हूँ।
0: अरे वाह कविता जी, देखिए हमने आपको पहचान लिया ना।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें पहचान पाए।
0: कारण पता क्या इसका?
1: जी
0: आपकी आवाज़ इतनी मीठी है कि हर कोई पहचान ले, है ना?
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: अच्छा क्या करती हैं आप कोटा में?
1: जी। कोटा में हम भी एक आकाशवाणी में कंपेयर हैं।
0: अच्छा तभी मुझे लगा कि इतनी मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है।
1: एक जो अनाउंसर है वो कंपेयर की आवाज पहचान ही गया है।
0: बिल्कुल सही बात है आपकी, रेडियो की आवाज़ तो रेडियो वाले खैर पहचान लेंगे लेकिन आपके सुनने वाले भी आपको बखूबी पहचानते हैं। आज के दिन और कौन लोग हैं आपके साथ,
1: जी मेरे साथ पूरी मित्र मंडली है।
0: नाम बताएं?
1: गुलशन है, मोनिका है, स्मृति है, कुंदन जी है, नरेश जी है, और एक आप है,
0: अरे
1: और
0: वाह
1: शिपाल जी है, शोभा जी है, मधु जी है, भूपेन
0: अरे वाह,
1: सुतार जी है, सुल्तान जी है, वंदना
0: बहुत बड़ी टीम आपकी
1: जी
0: तो।
1: है, सहना जी है, चरण जी है, उषा जी है। हाँ
0: और इनके बीच में कहीं हरी जी भी हैं आपके साथ?
1: जी, वो तो सबसे पहले है। मेरी बिटिया है जो सूरतगढ़ के प्रोग्राम सुनती है वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा प्यार उसे देना हमारी तरफ से आप।
1: जी,
0: और गाना हम आपको कौन सा सुनवाएं?
1: आज दिन विशेष है, जैसे डॉक्टर्स डे है और सीए डे है, और बहुत से मित्रों का मेरा बर्थडे भी है,
0: अच्छा,
1: तो उसी बर्थडे पर सबको विश करते हुए आप कोई गाना सुना दीजिए। हाँ
0: कोई भी गाना।
1: जी, बर्थडे विश कर दिया हमारी तरफ से सब उस,
0: जी
1: आपको भी
0: जी बिल्कुल
1: डेडिकेटेड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाते हैं ये गाना आपके सारे दोस्तों को।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: नरेंद्र भाटी गणेश टॉक रातानाड़ा जोधपुर से। नहीं,
0: रातानाड़ा जोधपुर से गणेश जी बोल रहे हैं?
1: नरेंद्र भाटी जी।
0: नरेंद्र भाटी बोल रहे हैं? भाटी साहब, आपने फोन पहले किया था हमें?
1: कब?
0: कब किया था ये पूछ रहे हैं हम।
1: हाँ नहीं, वो तो याद नहीं आ रहा है, समय हो गया काफी।
0: बहुत समय हो गया। अच्छा भाटी साहब, क्या करते आप? आपकी आवाज़ हमें साफ क्यों नहीं मिल रही?
1: टेलर शॉप है।
0: मेरी आवाज़ आपको साफ मिल रही है?
1: हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ,
0: लेकिन आपकी आवाज़ हमें साफ नहीं मिल रही भाटी साहब, क्या कीजिएगा?
1: कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया सर
0: अच्छा नरेंद्र जी, आप क्या करते हैं?
1: जी। मेरा टेलर शॉप है, सिलाई
0: क्या शॉप है?
1: का
0: सिलाई
1: दुकान
0: का? अरे वाह, क्या सिलते हैं आप?
1: जेंट्स में सभी बनाता हूँ मैं, और मेरे नीचे लेडीज सारी करती है।
0: हाँ, जेंट्स के टेलर हैं आप, तो हमें आप एक शर्ट सिल देंगे क्या?
1: जरूर, क्यों नहीं, हमारा काम ही है।
0: अरे वाह, क्या बात है। और कौन लोग हैं
1: हाँ
0: आपके साथ?
1: जी,
0: आपके साथ अपने मित्रों के नाम कुछ बता दें आप हमें।
1: मित्रों के नाम तो अभी हमारे सूरजगढ़ में तो किसी चरण साहब है, किसी
0: क्या है?
1: चरण, शेख चंद जी चरण।
0: अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सभी दोस्तों को, विशेष रूप से टेकचंद जी को भी हमारा नमस्कार आप कह देना। और गाना हम आपको कौन सा सुनवाएं?
1: गाना सर है, फिल्म का नाम महबूब सुमन जी, लता जी की आवाज है। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
0: सच्ची बात कही आपने, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना आप, है ना?

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ
0: नमस्कार जी। नमस्कार जी।
1: जी सर, मैं जीटीपी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ सर।
0: क्या हाल है अंसारी साहब आपके?
1: हाल चाल तो अच्छा है, खुदा का शुक्र है। हाल चाल और भी अच्छा हो गया यार। मेरे भाई साहब से आकाशवाणी सूरत घर पे कॉटन सिटी चैनल से बात हो रही है
0: अरे वाह, क्या बात है। आपने आखिरी बार कब फोन किया था हमें?
1: सर। मेरे को तकरीबन 1 महीना 16 दिन हो गए सर।
0: अरे वाह, पूरा रिकॉर्ड आपके पास है।
1: जी सर,
0: वाह क्या बात है, क्या करते हैं आप?
1: क्यों सर, अगर अगर हम आपकी बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हमारे को फायदा क्या है। हम श्रोताओं का प्यार मोहब्बत है और
0: जी
1: रेडियो सुनते हैं परिवार के और दोस्तों कस्टमर के साथ। मेरा
0: बिल्कुल।
1: सैलून की शॉप है सर, अहमदगढ़ मंडी जीटीपी मार्केट में।
0: अच्छा, सैलून शॉप है आपकी।
1: जी सर,
0: अंसारी साहब, हमने ये महीने का जो नियम बनाया आपको पसंद आया ना ये?
1: बहुत अच्छा है। पता क्या बात है सर, बंदे कितनी फोन से ट्राई करते और गुस्से में फोन भी छोड़ देते हैं। अभी मैं नहीं लगाना,
0: सही बात
1: मेरे
0: है।
1: को आज दिल से तमन्ना थी भी मेरा फोन लगेगा।
0: अरे वाह, क्या बात है
1: मन भवन
0: अंसारी
1: का
0: साहब।
1: नाम सर क्या है? मन भवन। अगर मन में भवन में तमन्ना है तो बात होगी।
0: अरे वाह, क्या बात है अंसारी साहब, आपकी बातें बड़ी मीठी है। कभी आपके पास आएंगे सैलून में हम।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम दिया है ना
0: गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: सर। गाना हमें अगर सर हो तो प्रेम रो फिल्म का गीत सुना दीजिए। बबरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार।
0: अरे
1: हमारा
0: वाह।
1: तो फूल रेडियो आकाशवाणी कोटन सिटी चैनल लेकर चला गया।
0: लेके कहाँ गया? बदले में फूल के बदले गुलदस्ता आपको दे दिया है ना।
1: थैंक यू सर, शुक्रिया जी।
0: सुनिए।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार जी। सिटी
0: नमस्कार जी।
1: ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से सतीश नेजा आपसे मुखातिब है।
0: अरे वाह, क्या बात है अनेजा साहब, आपने हमें फोन किया।
1: सबसे पहले तो चंडीगढ़ के रोज गार्डन के जितने भी गुलाब के फूल हैं,
0: हाँ।
1: और चंडीगढ़ में इस टाइम बारिश हो रही है, बहुत ही सुहाना मौसम हुआ पड़ा है,
0: अरे वाह,
1: सारा लेके दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सी मुबारकबाद कह रही हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सतीश बाबू आपका। बहरहाल आज के दिन आपने कार्यक्रम में फोन किया, साथ में बिमला अनेजा हैं, इसके अलावा और कौन है?
1: बस बिमला ने जी ये साथ में, बाकी बच्चे तो बाहर हैं अपने अपने घरों में, तो गए हुए हैं।
0: जी
1: बेटा कनाडा में रहता है,
0: हम्म,
1: तो हम दोनों बस आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। और मेरा

0: अखबार तो आकाशवाणी के से भरा हुआ है सर गांव।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते हैं आप। आज के दिन इस कार्यक्रम में आपको हम क्या सुनवाएं?
0: सुनवाएंगे तो जरूर सर, लेकिन हमारा जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे घर में हमेशा ही रेडियो चलता रहता है।
1: सही बात
0: और मैं कहीं चला भी जाऊं तो मेरी ड्यूटी बिमला निभाती है।
1: बिल्कुल सही बात है, ये प्रेम है रेडियो के प्रति आपका,
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई,
1: है ना। इसके हम सब लोग मुरीद हैं कि आप लोग आज भी रेडियो से उतनी ही मोहब्बत करते हैं।
0: तो रेडियो को अपना पूर्ण रूप से समर्पित कर रखा है खुद को रेडियो से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाना हम आपको कौन सा सुनवाएं ये सुनने के लिए
0: सर
1: हम उत्सुक हैं।
0: इस टाइम हमारे बड़ी अच्छी बरसात हो रही है तो एक गीत है, सबक फिल्म का गीत है, मुकेश की आवाज में, बरखा रानी जरा जम के बरस दो।
1: बिल्कुल हम आपको गाना ये सुनवाते हैं, सुनिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ।
0: शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार जी, नरेश शर्मा जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते जी। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, डॉक्टर सतनाम सामना बोल रहा है, हनुमानगढ़। हाँ
0: सतनाम सोना जी।
1: जी,
0: सोना जी, आपने फोन पहले कब किया था हमें?
1: पहली बार किया सर, इस बार।
0: पहली बार किया आपने फोन।
1: जी
0: इसका मतलब कार्यक्रम तो आप सुनते हैं पहले से?
1: हाँ जी, कार्यक्रम हमेशा ही सुनता हूँ जी, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक।
0: अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, इतने अब क्या मजबूर हुए आप कि आपको फोन करना पड़ा कार्यक्रम में?
1: सर, मेरा एक दोस्त है अपने, वेद मिड्डा जी, उन्होंने
0: हाँ,
1: मेरे बताया कि आप।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही वेद जी ने, आपको जोड़ दिया इस टेलीफोन वाले कार्यक्रम हेलो मन भावन के साथ।
1: हाँ जी सर, जी हाँ, मेरे
0: अच्छा, और कौन लोग हैं आपके साथ?
1: साथ है जी, मैं खुद हूँ, डॉक्टर सत्यनाम सावना, जसविंदर जसी, अमन अंशदीप सावना, अरमन और तमन्ना।
0: वाह सोना साहब, आपने हमें फ़ोन किया, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रेडियो आप इसी तरह सुनते रहें। गाना हम आपको कौन सा सुनवाएं?
1: सर, आप कोई भी गाना सुना दीजिए, हमें
0: कोई भी
1: पसंद है।
0: गाना
1: हाँ
0: आपको चल जाएगा।
1: जी,

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: हाँ जी, मैं कच्छ गुजरात से बीभा भाई रेबारी बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ आकाशवाणी। जी,
0: हाँ, रेबारी साहब, आपने पिछली मर्तबा कब फ़ोन किया था हमें?
1: मैंने पहली बार किया है सर।
0: अच्छा, पहली बार फ़ोन किया आपने,
1: जी बिल्कुल,
0: और आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल, सुन रहे हैं आपके जो अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपके आकाशवाणी के जो सब प्रचार होता है उसके माध्यम से हम सुनते रहते हैं। अपना ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं ना जी।
0: जी बिल्कुल, ऐप के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं हमें। हेलो
1: हाँ जी,
0: मनभावन कार्यक्रम के लिए आपको फ़ोन करने के लिए कहाँ से जानकारी मिली?
1: हमारा एक ग्रुप है जो आकाशवाणी ग्रुप है, उसमें हमारे कम से कम 20 25 आदमी हम जुड़े हुए आकाशवाणी श्रोता मित्र हम हैं,
0: जी
1: तो उसको हम एक दूसरे को सब जानकारी देते रहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से सबके। अभी यहाँ फोन लगाना है, ये टाइम है, मिल जाता है फोन नंबर।
0: अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फोन लगाना है, कार्यक्रम भी सुनते हैं ना आप?
1: नहीं, सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, आपके कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं ऐसे
0: जी
1: तो,
0: बिल्कुल।
1: मतलब यानी कि सुबह के शाम तक तो ये नहीं सुन सकते, लेकिन जो खास खास कार्यक्रम हो तो वो सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप खास खास हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा खास गाना सुनवाया?
1: जी, मुझे गाना सुनना है, आपके पसंद का जो भी गाना हो सर चला दीजिएगा।
0: हमारी पसंद का गाना आपको जच जाएगा ना?
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: ठीक है, तो सुनिए आप हमारी पसंद का ये गाना।
1: और हम हमारे श्रोता मित्र के नाम ले सकते हैं सर?
0: हाँ जरूर, लीजिए ना।
1: हाँ, तो हमारे श्रोता मित्र है धीरज भाई दबारी है, और किरीट भाई है, हिरेन भाई है, मनोज भाई है, और खोड़ू भाई गढ़वी है, अब्दुल भाई कादर खत्री, अफजल भाई है, ये सब हम आकाशवाणी के जो ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो अब हम सब सुनते हैं सर।
0: आप सब सुनना आज का ये कार्यक्रम।
1: जी जी बिल्कुल।

दोस्तों, आज के हेलो मन भवन के लिए तकनीकी साथी कप्तान सिंह नरेंद्र शर्मा, संयोजक नवीन सिसोदिया, सूत्रधार रोहिता शर्मा। आखिर प्रोग्राम याद करें कभी कन्हैया लाल नंदन को, जिनकी जयंती का दिन है आज। वे कहते हैं कि फूल बनकर खेलूंगा, बिखर जाऊंगा, खुशबुओं की तरह से बसा लो मुझे, और दिल से गहरा न कोई समंदर मिला, देखना है तो अपना बना लो मुझे। नमस्कार।

0: पहुंचने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मन भावन। निर्देशक व संयोजक थे नवीन सिसोदिया। प्रस्तोता थे रोहिता शर्मा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजे

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR Congo के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR Congo ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रम यहीं समाप्त होते हैं। कल सुबह 5:50 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।